आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तट

0: वर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं संवित स्वर में ये देश गान।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अनूप जलोटा के स्वरों में।

श्रोताओ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण, अनुराधा पौंडवाल, अनूप जलोटा और साथियों के स्वरों में कुछ भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुरु नानक के विचार।
1: प्रत्येक प्राणी का कर्म के अनुसार ही न्याय होता है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है और उसका नियम निर्दोष है। जो भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं वे ईश्वर के दरबार में सम्मानित होते हैं और ईश्वर की दया से ही वो मान प्राप्त कर पाते हैं। सच्चे भक्त के हृदय में अपवित्रता नहीं होती है, उसका मन ईश्वर में लीन रहता है। गुरु के द्वारा वो शब्द का अर्थ जान लेता है और डुबा लेता है अपने को ईश्वर के अमृतमय नाम में। गुरु की दीक्षा होती है उसके अंतर में दीप्तिमान, फलतः अज्ञान का अंधकार लुप्त हो जाता है। भगवान के भक्त के पास केवल भगवान का धन होता है। अपने जीवन के लिए गुरु की दीक्षा मानकर चलते हैं। वे सदा ईश्वर का गुणगान करते हैं, ईश्वर का नाम ही उनका मूल धन है। जिनके हृदय में नाम है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे भगवान का ध्यान प्रेम से करते हैं, ईश्वर होता है प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर उन्हें। जो सतनाम का सहारा लेते हैं केवल वे ही शांति और आनंदमय जीवन पाते हैं। वो गुरु की वाणी द्वारा सत्य को पाते हैं और उनके पाप धुल जाते हैं। जो ईश्वर का गुणगान करता है और सतनाम से प्रेम करता है, जिस पर ईश्वर की दया होती है वो भक्ति का खजाना पा जाता है। जो करता है एक निष्ठ हो ईश्वर की स्तुति, हो जाता है वो भवसागर पार। ईश्वर की कर स्तुति तू, हो जाए जिससे तेरे पाप क्षीण। जो प्रेम करते हैं और अपने ईश्वर में ईश्वर नाम का बीज बोते हैं वो मृत्यु और जन्म से मुक्ति पा जाते हैं और सदा के लिए बिना कष्ट किए मोक्ष पा जाते हैं। ऐसे लोग जिनका मुंह और जिव्या स्वच्छ और शुद्ध है वे अन्य व्यक्तियों को भी स्वच्छ और शुद्ध बना देते हैं। जैसे पुष्प में सुगंध का वास है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब का वास है, उसी प्रकार हृदय में भगवान का वास है। तो फिर भगवान को बाहर क्यों ढूंढा जाए? किरण सूर्य में विलीन होती है, लहर सागर में, प्रकाश प्रकाश में लीन होता है और मानव पूर्ण हो जाता है। दिन और रात जो हम व्यवहार करते हैं वो भाल पर पूर्वांकित है, क्योंकि ईश्वर से लज्जा छुपा नहीं सकता। ईश्वर सार्वभौम है। जब साकार संसार का जन्म नहीं हुआ था तब कहाँ था पाप और कहाँ था पुण्य? यदि दया तेरी मस्जिद है, विश्वास तेरा पूजा का आसन, ईमान तेरा पुराण और विनम्र

नम्रता सुन्नत, संतोष तेरा उपवास है, तब तो तू सच्चा इंसान है। यदि कोई बिना सहायता के केवल अपनी ही शक्ति के सहारे ईश्वर को जानने का पाखंड रचे तो उसे आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं माना जा सकता। लाख बार सोचना व्यर्थ है यदि एक बार भी कार्य न करो। केवल मौन रहना व्यर्थ है यदि मन को भटकने से न रोका जाए। पेट पर रोटी का भार वजन बांध लेने से ही भूख नहीं मिट जाती। जैसे स्वर्णकार अपने कारखाने में आभूषण बनाता है, उसी प्रकार अपने मन को एक सच्चा कारखाना बना डालो जहां सत्य और ईश्वरीय विचारों की रचना हो। ये सब मन तथा शरीर को बस में रखकर इंद्रियों और विचारों पर विजय प्राप्त करके ही किया जा सकता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुरु नानक देव के विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगे ए हरिहरन, संगीत होगा सतीश भाटिया का। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे पशुओं में अफारा रोग कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे बच्चों के दिल में छेद की परेशानी विषय पर डॉक्टर वीके राजपाल की वार्ता। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन सकेंगे सुबह 7:31 पर। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुना जा सकेगा सुबह 8:45 पर और पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा सुनेगा सुबह 9:25 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 9:45 पर। कार्यक्रम में आप सुनेंगे संजय उपाध्याय के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ हारमोनियम पर संगत करेंगे गोपाल सिंह परमार और ढोलक पर साथ देंगे राधा मोहन शर्मा एवं बांसुरी पर साथ देंगे ज्वाला प्रसाद। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता सुना जा सकेगा सुबह 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग शुक्ल बिलावल। कार्यक्रम आज के कलाकार आप सुनेंगे सुबह 11:00। कार्यक्रम में सुनेगा संगीतकार राहुल देव बर्मन के बारे में। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का प्रसारण समय रहेगा सुबह 11:30। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ एवं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी सुना जा सकेगा दोपहर 12:00। कार्यक्रम में सुनेगा प्रेम कुमार शर्मा के गाए कुछ ब्रज लोकगीत। नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई तराने आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर।

गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल विषय पर चर्चा, साथ ही सुनवाई जाएगी गीतेश पाठक की वार्ता, विषय होगा स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित आहार। लोकगीतों के अलावा बताया जाएगा दादी का बटुआ और आपकी रसोई। 1:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनेगा शुभम शर्मा के गाए कुछ भजन। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 2:30 पर आप सुनेंगे पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग मिश्र पहाड़ी में धुन और पंडित मोहित कुमार का गिटार वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग पहाड़ी में धुन। पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुना जा सकेगा 2:45 पर। दिन में 3:00 सुनेगा लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। श्रोताओ, ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:35 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन, संगीत है सतीश भाटिया का।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे ए हरिहरन, संगीतकार थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब समय है कार्यक्रम खेती की बातें का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पशुओं में अफारा रोग कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता।
1: अफारा रोग अक्सर गोमंथ वाले पशुओं में पाया जाता है। गोमंथ वाले पशु जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। गोमंथ आमाशय का पहला भाग है, जिसमें पशु आहार को इकट्ठा कर लेता है, फिर जुगाली के माध्यम से दांतों से चबाकर आहार के मोटे मोटे कणों को छोटा करके वापस गोमंथ में करता है। अफारा को अंग्रेजी में टिम्पेनी तथा ब्लोट कहते हैं। इस बीमारी का प्रमुख कारण है रोमंथ में अधिकाधिक मात्रा में हवा भर जाना, जो पशु के लिए घातक होती है। हवा बनने के कारण हरा चारा की बहुत सी मात्रा खा लेता है। हरा चारा जिसमें पत्तियां अधिक हो, उसमें पानी की मात्रा का प्रतिशत 80 से 90 तक होता है। इस प्रकार चारे को कोमल ग्वार, लोबिया, दूब, घास, रिजका आदि बरसात के मौसम में तथा बरसीम जई या जाड़ों के मौसम में है। जब इन चारों में पानी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो रोमंथ में भाप बनकर अधिक मात्रा में बनकर उसे गुब्बारे की भांति बना देता है। अतः ऐसी दशा में हरे चारे के साथ गेहूं, चना, जौ आदि का भूसा अथवा सूखी ज्वार की कड़वी मिलाकर खिलाना चाहिए। सड़े गले पदार्थ जब रोमंथ वाले पशुओं को खिलाते हैं, तो उससे भी अफारा होता है। यदि पशु को बाई कोख में थपथपाएं, तो ऐसा लगेगा कि हम गुब्बारे को थपथपा रहे हैं। यह अफारा रोग है। यदि थपथपाने से ऐसा लगे जैसे गुथा हुआ आटा भरा हो, तो हम पाएंगे दूसरी बीमारी, जिसका नाम है इंफेक्शन। अफारा पशुओं का साधारण रोग है, जो गलत आहार के कारण होता है। यह छूत की बीमारी नहीं है, जैसे घुरका, पौका, जहरी बुखार आदि। अतः हमको सावधानी पशु के खाने में बरतनी चाहिए कि उसे संतुलित आहार मिले, जिसमें ठोस पानी की अनुपात सही हो। सड़ा गला आहार बिल्कुल नहीं दें। यदि पशु बोलता नहीं है, तो हमें उसकी दैनिक दशा पर कठोरता से मनमानी नहीं करनी चाहिए। हींग अधिकतर सभी पशुकालयों को घर में मसालों के तौर पर पाई जाती है। अतः अपारे के इलाज में हींग की 8 ग्राम मात्रा, सौंफ की 8 ग्राम और काला नमक 8 ग्राम मिलाकर 4 घंटे के अंतर पर इतनी मात्रा में खिलाएं। पशु धीरे धीरे कुछ समय में ठीक हो जाएगा। अगर अफारा हल्का है, तो पशु को 8 ग्राम सौंफ 8 ग्राम 6 घंटे के अंतर पर दी जा सकती है। तारपीन का तेल भी अफारे के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तरुण गाय भैंस को तारपीन का तेल 60 मिलीलीटर, अमोनिया का घोल 60 मिलीलीटर और अलसी का तेल आधा लीटर खूब मिलाकर नाल के माध्यम से मुंह को ऊपर

0: उठाकर पिलाएं। ध्यान रहे यह श्वास नली में नहीं जाना चाहिए, अतः फेफड़ों में पानी भरने से जानवर मर सकता है। इस इलाज में पशु को जल्दी आराम मिलता है। यदि अंग्रेजी दवाइयों की दुकान जहां पशु की दवाइयां उपलब्ध हो तो ऐसी दशा में एल्वोनॉक्स नामक दवाई उपयोग की जा सकती है। यह दवाई आसानी से दी जा सकती है और यह बहुत अधिक कारगर है। यदि आपको लगता है कि पशु अधिक बेचैन है तथा अत्यधिक छटपटा रहा है और अफारे के कारण रोमंथ बहुत फूलता जा रहा है कि पेट फटने की आशंका है अथवा लंग्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ने से और हृदय पर ज्यादा प्रभाव पड़ने से पशु की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी दशा में वे टोकार कैनुला नाम का औजार पशु के लिए लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए पशु चिकित्सक काबिल है और उसे बुलाना चाहिए। टोकार एक छड़नुमा औजार है जिसकी एक कोने को नुकीला कर दिया जाता है और कैनुला एक खोखला पाइप है जिसमें टोकार फंसा होता है। लगाते समय उसके पशु की बाई कोख में घोंप दिया जाता है, टोकार निकाल लेते हैं, कैनुला फंसा रहता है। इस तरीके से रोमंथ की हवा निकल जाती है, पशु बच जाता है। पशुओं को अक्सर नाले का पानी पिला देते हैं और नाले के पानी में बहुत से पारजैविकी बैक्टीरिया और विषाणु होते हैं, वायरस। इस प्रकार उनसे अनेक बीमारी हो जाती हैं और यह अफारा रोग भी उत्पन्न कर सकता है। और उसमें सीवेलचाई एक प्रमुख कीड़ा है और पारजैविकी में फैसियोला हेपेटिका आदि अनेक पारजैविकी होते हैं। टेप वर्म्स भी उनमें से एक है। इस प्रकार के पारजैविकी भी पशु के लिए खतरनाक होते हैं। विषाणु इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मगर उनको अवस्था जल्दी से खत्म हो जाती है। अतः पानी को हमें साफ सुथरा पिलाना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में होलसम कहते हैं, कि पानी जो है गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी नाली का और गंदे ड्रेनेज का पानी पिला दें वो पशु के लिए खतरनाक है। ऐसा है कि पानी को अगर शहर में रह रहे हैं तो क्लोरिनेटेड वाटर पिलाएं, और अगर किसी गांव में रह रहे हैं तो गंदे पोखर में न पिलाएं जहां स्टैग्नेंट वाटर है, वो पशु के लिए नुकसानदायक होता है। बहता हुआ पानी पशु के लिए बहुत उपकारी है, इसीलिए बहते हुए पानी को पिलाना चाहिए। और अगर इस पानी से अफारा रोग या कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देने बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक में कई ग्रुप हैं, जिनमें एक तो बैक्टीरियोसाइट हो जाता है जो कीड़े मारता है, दूसरा इन कीड़ों को बाहर निकालता है, स्टैटिक कर देता है। तो ऐसे इलाज में खुद नहीं करना चाहिए, पशु की सलाह लेनी चाहिए कि उसे क्योंकि बैक्टीसीडल जो है बीमारी को अगर मान लो उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो जब कीड़ा मरता है तो उसमें से ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो पशु के लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए उनकी डोज जो खुराक है वो नियमित करनी चाहिए, क्योंकि ये काम है पशु चिकित्सक का है, किसी ऐसे अतार वगैरह से या किसी ऐसे अनाड़ी से नहीं इलाज कराना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। पशु चिकित्सक जो है आदमी की दवाई वो भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर पशु की दवाई नहीं उपलब्ध है तो आदमियों की दवाइयों को उस डोज में कन्वर्ट करके भी इलाज कर सकता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पशुओं में अफारा रोग कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर।

अगर आप आने वाली पीढ़ी को प्यार करते हैं तो पेड़ लगाइए, पृथ्वी को बचाइए। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखंडेषु लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः एसएसकेएम चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के दो विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बच्चों के दिल में छेद की परेशानी विषय पर डॉक्टर वीके राजपाल की वार्ता।
1: भाइयों और बहनों, आज मैं आपको, आपने देखा होगा कि कई माँ बाप कि वो इस बात से चिंतित रहते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें बता दिया है कि उनके बच्चे के दिल में छेद है, और इसका अपने आप पता तब लग सकता है यदि आप शुरू से ध्यान दें कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो क्या ठीक से बढ़ रहा है। अगर वो नहीं बढ़ रहा तो हो सकता है उसके किसी हिस्से में और हो सकता है दिल के अंदर छेद वाली प्रॉब्लम हो। कभी कभी बच्चा दूध पीते वक्त हाँफ जाता है, कभी कभी उसके सर पे पसीना आ जाता है, और अगर बच्चा बड़ा है तो वो खेलता है, दौड़ता है तो हाँफ जाता है। ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी बच्चा नीला भी पड़ जाता है, और इस नीलेपन का कारण दिल के अंदर दूसरे दोषों के अलावा दिल में छिद्र का होना भी हो सकता है। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम जो है बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, और बाल रोग विशेषज्ञ को हमने ट्रेनिंग दी है कि वह दिल की जांच करके ये बता सके कि क्या दिल में कोई खराबी है कि नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि दिल की आवाज़ों में कोई खराबी है तो आगे जांच करके वो इसको कंफर्म कर देते हैं। इसके बारे में शंका का समाधान ऐसे हो सकता है कि जो दिल है हमारा वो 6 हफ्ते तक जब पेट में बच्चा होता है तभी पूर्ण बन जाता है। अगर उस वक्त माँ में कोई दोष है, माँ में कोई बुखार है, खांसी है या कोई अनुवांशिक चीज है, तो उसका असर दिल पे पड़ सकता है और दिल के अंदर कोई ना कोई खराबी पैदा हो सकती है। पर अभी तक के अध्ययनों से पता लगा है कि 90% बच्चों में जिनके अंदर ये खराबी होती है उसका पता ठीक से नहीं लग पाता और उसका कारण ज्ञात नहीं हो पाता। अब ये छिद्र होता क्या है? ईश्वर ने जब बच्चे को पेट में रखता है, भ्रूण अवस्था में होता है, उस वक्त उसको जिंदा रहने के लिए मां से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो तरह तरह के द्वार भगवान उसमें खोल देता है, और जो ही बच्चा पैदा होता है इन द्वारों को बंद हो जाना पड़ता है। पर किसी कारणवश अगर ये द्वार बंद नहीं हो पाते तो डॉक्टर और आप जो है बच्चे को तकलीफ होती है और कहा जाता है कि बच्चे के अंदर छेद हो गया। एक्चुअली ये छेद जो है एक नॉर्मल चीज होती है, इसको बंद होना होता है, अगर नहीं बंद हो पाता तो कहते हैं दिल में छेद। इसकी दो मुख्य जो है अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये जो हमारा दिल है उसके नीचे के भाग के अंदर कोई द्वार खुला रह जाता है तो उसे VST कहते हैं, अगर ऊपर के भाग में कोई द्वार खुला रहता है तो उसे ASD कहते हैं। और ये कई तरह का हो सकता है। कई बार तो ऐसा हो सकता है कि जिंदगी भर आपके दिल के अंदर ऐसी अवस्था हो आपको पता ही ना लगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये अवस्था इतनी ज्यादा भयानक होती है कि थोड़े से ही दिनों में बच्चा जो है पनपता नहीं है ठीक से, और वो जो है तरह तरह से हाँफ जाता है, तरह से नीला पीला पड़ता है, तो इसी अवस्था में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसकी जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। जब आपको पता लग गया कि दिल के अंदर छेद है तो आपको ये भी इच्छा होगी कि मैं जानूं इसका उपचार क्या। 20-30% जो ये डिफेक्ट्स हैं, जो ये छेद हैं, ये अपने आप भी समय के अनुसार बंद हो जाते हैं। इसमें यह देखना पड़ता है कि डॉक्टर इस बात का

0: ध्यान रखे कि कोई भी जटिलता ना पैदा हो, पर अगर ये अपने आप बंद नहीं होता है, जटिलता होती है, तो अब हमारे पास बहुत ही सेफ तरह के इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स और बहुत ही सेफ तरह के ऑपरेशंस आ चुके हैं। घबराने की कोई बात नहीं है और 99% इसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे बच्चों के दिल में छेद की परेशानी विषय पर डॉक्टर वी के राजपाल की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संवित स्वर में ये देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवित स्वर में ये देश गान। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, सुबह के 7:18 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।
1: कोई परिणाम नहीं होगा,
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान और चढ़ावा मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर बाकी आरोपियों से कुल मिलाकर 79,85,000 रूपये से अधिक रकम बरामद की गई है। आरोपियों को 29 जून को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

0: ने कल गोरखपुर में एक निजी एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने राज्य में 2017 से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति के लिए तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वर्तमान सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 से 2029 की अवधि के लिए कल मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्द्र सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और यह देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा के मौके पर कल प्रदेश भर में ताजिया जुलूस निकाले गए। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। जुलूसों के बाद देर रात तक करबला में ताजियों को दफन किया गया। लखनऊ स्थित तालकटोरा की करबला में बड़ी संख्या में लोगों ने इमाम हुसैन को याद किया। 10वीं मुहर्रम पर गोरखपुर में भी कल सुबह से ही ताजिया जुलूसों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ जो रात भर चलता रहा। एक रिपोर्ट।
3: मुहर्रम की 10वीं तारीख पर महानगर के सभी इमाम चौकों पर बैठाए गए ताजिए के साथ अकीदत मंदों ने जुलूस निकाला और करबला पहुंचकर ताजियों को करबला में दफन किया। इमाम चौकों पर रखे गए बड़े ताजिए जुलूस में शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मथुरा, सुल्तानपुर, फरुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, जौनपुर, उन्नाव, हापुड़ और महाराजगंज सहित राज्य के सभी जिलों में ताजिया जुलूस निकाले गए। इस अवसर पर प्रदेश भर में ताजिया जुलूस मार्गों और करबलाओं के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्रीराम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:31 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ खोए हुए व्यक्तियों की सूचना सुन लीजिए। थाना जैथरा एटा से प्राप्त सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम आजाद पुत्र प्रमोद है। ये 16 मई 2026 से लापता है। आजाद ग्राम कलवरिया एटा के रहने वाले हैं। इनकी आयु 22 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 7 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा पतला है। ये सफेद रंग की टी शर्ट, काले रंग का पैंट और पैरों में हवाई चप्पलें पहने हुए हैं। आजाद के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना जैथरा जनपद एटा के पते पर सूचित करें। थाना कोतवाली नगर एटा से प्राप्त सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम आदित्य राठौर, पुत्र स्वर्गीय श्री किशन राठौर है। ये 14 मई 2026 से लापता है। आदित्य राठौर नगला पोता कोतवाली नगर एटा के रहने वाले हैं। इनकी आयु 25 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। ये जीन्स टी शर्ट पहने हुए हैं। आदित्य राठौर के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना कोतवाली नगर जनपद एटा के पते पर सूचित करें। थाना जैथरा एटा से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार कामिनी पत्नी सोरन सिंह विगत 9 मई 2026 से लापता हैं। ये ग्राम महकिया जैथरा एटा की रहने वाली हैं। कामिनी की आयु 26 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। ये लाल रंग की साड़ी और सादा चप्पलें पहने हुए हैं। कामिनी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना जैथरा जनपद एटा के पते पर सूचित करें। थाना मारहरा एटा से प्राप्त सूचना के अनुसार पिंकी पत्नी रामबाबू विगत 23 मई 2026 से लापता हैं। ये ग्राम पचपेड़ा एटा की रहने वाली हैं। पिंकी की आयु 40 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये हरे रंग की साड़ी पहने हुए हैं। पिंकी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना मारहरा जनपद एटा के पते पर सूचित करें। थाना कोतवाली नगर एटा से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार प्रिया पत्नी आलोक विगत 25 मई 2026 से लापता हैं। ये मानपुर कोतवाली देहात एटा की रहने वाली हैं। प्रिया की आयु 19

वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ है। ये पीले रंग की साड़ी पहने हुए हैं। प्रिया के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना कोतवाली नगर, जनपद एटा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों की सूचना समाप्त हुई।

आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। श्रोताओं, आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सूचनाओं पर। नीट की आंसर की जारी, आपत्ति मांगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UGC एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी की है। इसके साथ ही NTA ने छात्रों को आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया है। आंसर को चुनौती देने की ऑनलाइन विंडो खोली गई है। ये प्रक्रिया 28 जून तक चलेगी। NTA की ओर से कहा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में दिए गए प्रश्नों के जवाबों से संतुष्ट नहीं है तो वो आपत्ति दे सकता है। उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए उम्मीदवारों के पास 28 जून की रात 11:50 तक का समय रहेगा। उम्मीदवारों को हर प्रश्न की आपत्ति दर्ज कराने को ₹200 का शुल्क देना होगा। यदि उम्मीदवारों द्वारा किया गया दावा विषय विशेषज्ञों की समीक्षा में सही पाया जाता है तो यह शुल्क बाद में वापस कर दिया जाएगा।

5 घंटे पहले पता चलेगा किस सेट से टीईटी होगा। 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग खास सतर्कता बरत रहा है। पिछली बार 4 साल पहले नवंबर 2021 में यूपी टेट की का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ गई थी और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की खासी किरकिरी भी हुई थी। ऐसी किसी भी आशंका को समाप्त करने के लिए इस बार कई कदम उठाए गए हैं। चयन आयोग ने प्राथमिक और उच्च स्तर की यूपी टेट के लिए प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार कराए हैं। परीक्षा में किन प्रश्न पत्रों के सेट का प्रयोग किया जाएगा इसकी सूची परीक्षा के दिन पेपर शुरू होने के 5 घंटे पहले ही दी जाएगी। अपर जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी, कोषाधिकारी और कार्यदायी संस्था के जिला प्रबंधक ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस प्रश्न पत्र सेट कोड व ट्रंक लेबल कलर कोड का चयन किया गया है उस पाली में उसी कलर कोड के ट्रंक में रखे पेपर का वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी टेट के लिए पंजीकृत कुल 19,94,661 अभ्यर्थियों के लिए 955 केंद्र बनाए गए हैं।

यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 30 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 27 जून निर्धारित थी, लेकिन 26 जून को मुहर्रम अवकाश और 27 जून को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों के बंद रहने की स्थिति को देखते हुए परिषद ने तिथि विस्तार का निर्णय लिया है। श्रोताओं, सूचनाओं का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। नए हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं देना होगा। देश में अब नए हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं होंगे। इसके लिए सरकार ने SOP जारी कर उसका सख्ती से पालन करने के लिए शीर्ष अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति गठित की है। वर्तमान में देशभर में 130 स्थान ऐसे हैं जहां यात्रियों को यह दूरी 60 किलोमीटर तय करने के लिए दो बार टोल टैक्स देना पड़ रहा है। इनमें से लगभग 22 टोल प्लाजा तो ऐसे हैं जो 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित हैं। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जून को SOP जारी की है।

रोडवेज में संविदा चालक के लिए 29 को रोजगार मिला। रोडवेज में अनुबंध पर 180 चालकों की भर्ती को रोजगार मिला। 29 जून को लगेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 23 वर्ष 6 माह से अधिक हो व 8वीं कक्षा पास हों।

जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ महंगा। नगर निगम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अब पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। सामान्य आवेदन शुल्क 2 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए, विलंब या विशेष आवेदन शुल्क 5 रुपए से 50 और 1 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड का शुल्क 10 रुपए से 100 रुपए कर दिया गया है।

शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन शुरू। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1454 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है। पात्र व्यक्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

किसान 30 जून तक केवाईसी कराएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को 30 जून तक ई केवाईसी करानी होगी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को अपात्र माना जा सकता है। सुविधा जनसेवा केंद्रों और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।

10 जुलाई तक 30 से 70 फीसदी तक बारिश का अनुमान, दो दिन तक उमस फिर बारिश होने के आसार। ताजनगरी में जुलाई का पहला सप्ताह भीगा भागा सा रह सकता है। 1 जुलाई से लगातार बारिश के आसार हैं। 10 जुलाई तक हर दिन 30 से 70 फीसदी तक बारिश का अनुमान है। ऐसा होने पर तापमान में खासी गिरावट होगी, वहीं फिलहाल दो दिन चुभन भरी गर्मी झेलनी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जून से मानसूनी बारिश की घोषणा की गई थी, हालांकि मानसून बार बार कमजोर हो रहे हैं, इसलिए माह के अंत तक बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि 1 जुलाई से मौसम विभाग के अलावा दूसरी कई एजेंसियां बारिश की उम्मीद

बता रही हैं। पहले सप्ताह में मानसून की भरपूर बारिश होने वाली नहीं है। हर दिन औसत से कम बारिश होगी, यह 30 से 70 फीसदी तक हो सकती है। मानसूनी बारिश शुरू होने के बाद आंधी तूफान की आशंका नहीं जताई गई है। लगातार 10 जुलाई तक बारिश होने से दिन में तापमान में करीब 10 डिग्री तक की गिरावट आने के संकेत हैं, यानी तब दिन का तापमान 30 डिग्री या इससे भी कम रह जाएगा। बेहद गर्म शुक्रवार पारा 43.0 डिग्री। शुक्रवार को सुबह से भीषण गर्मी रही। उमस की अधिकता से चुभन वाली गर्मी का एहसास किया गया। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक होकर 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड

तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक होकर 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 63 दर्ज किया गया। श्रोताओं, ये थी आज की मुख्य सूचनाएं और आइए अब आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोताओ, इसी के साथ ही कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी

0: उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है, लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गाँवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर

0: को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले टी20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है, जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में 2 बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से बातचीत करेंगे और दो तरफा तआवुन के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। नीज वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर आज़म मोदी अपने दौरे में सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। आज वो शजरकारी की एक तकरीब में जड़ी बूटियों के एक बाग की सैर करेंगे और सेशल्स के साहिली गार्ड के ठिकाने का दौरा करेंगे। भारत और सेशल्स के दरमियान एक देरीना शराकत दारी है, जिसकी जड़ें तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। बहिरे बहरे हिंद खित्ते में एक समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का भारत के विजन महासागर में एक खास मकाम है और आलमी जुनूब के तई इसका एक अहद है। वज़ीर आज़म के इस दौरे से भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती और सभी शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के मुश्तरक अज़्म का इआदा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इमदाद बाहमी पर मबनी पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का गुजरात के 14 बड़े शहरों में आगाज करेंगे। ये तकरीब आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनक्किद की जाएगी। जनाब शाह गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। वो बहुत से बुनियादी कामों का भी आगाज करेंगे और कुछ जायजा मीटिंगों की सदारत करेंगे। हमारे नामा निगार ने बताया है कि इस प्रोग्राम में वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी, इमदाद बाहमी शोबे के नुमाइंदगान और 4000 से ज्यादा ड्राइवर्स शिरकत करेंगे। इस तकरीब के दौरान आला तरीन कारकर्दगी की पेश करने वाले ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म से मुतालिक सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत टैक्सी को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने 8 बड़े इमदाद बाहमी इदारों की मदद से तैयार किया है, जिनमें अमूल, इफको और नाबार्ड शामिल हैं। ये इदारा अपना कामकाज बगैर किसी कमीशन के अंजाम देता है, जिसकी वजह से ज्यादा माली फायदा बराह रास्त ड्राइवर्स को जाता है। पिछले साल दिसंबर में जब भारत टैक्सी का ऑनलाइन आगाज हुआ था तो इस पर सिर्फ गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा ड्राइवरों और 7 लाख से ज्यादा सार्फिन ने इंदराज कराया था और तभी से रोजाना 3,500 से ज्यादा लोग इसके जरिए सफर कर रहे हैं। ये सर्विस इब्तदाई तौर पर गुजरात के 14 बड़े शहरों में शुरू की जाएगी, जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा भी शामिल हैं और ये सर्विस 1 महीने के अंदर अंदर पूरी रियासत में शुरू कर दी जाएगी। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: एटमी तवानाई के महकमे के सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है। ये फैक्ट्री कॉपर क्लोरीन हरारती कीमियावी तसलसल पर मबनी है और जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। ये फैक्ट्री कलापक्कम में एटमी तहकीक के इंदिरा गांधी मरकज में कायम की गई है। डॉक्टर मोहंती ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई को हाइड्रोजन की तैयारी जैसी माहौल के लिए साजगार तवानाई की उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मरबूत किए जाने से तवानाई से मुतालिक एक पायदार मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इस मुनफरिद अहलियत

0: वाली न्यूक्लियाई तवानाई से कार्बन से पाक काबिल इन्हिसार बिजली फराहम होगी। देही तरक्की के वजीर जनाब शिवराज सिंह चौहान इस माह की 28 और 29 तारीख को नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस 2026 की सदारत करेंगे। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में देही तरक्की के वजरा, सभी रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के सरकारी सीनियर अहदेदार और माहरीन मजमुई देही तरक्की पर तबादला ख्याल करेंगे और अहम प्रोग्रामों का जायजा लेंगे। नीज देही भारत के लिए मुस्तकबिल का खाका तैयार करेंगे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान की क्यादत में पहली मरतबा इतने वसी पैमाने पर कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियों के तनाजुर में अमरनाथ यात्रा के रास्ते की 24 घंटे मुसलसल निगरानी की गरज से टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी का मंसूबा प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। जम्मू के हमारे नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक अनकरीब अमरनाथ यात्रा के लिए तौसी दिए गए सिक्योरिटी निजाम के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने इस पहल का आगाज किया। प्रोजेक्ट हॉक आई के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने यात्रा के रास्ते पर फजाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट्स तैनात किए हैं। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की। इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुपहर 5:10 से सुन सकते हैं। आप हमारे ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम कल सुबह 9:10 पर भी नशर किया जाएगा। ये खबरनामा आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 920 तक पहुंच गई है और तकरीबन 3,300 अफराद जख्मी हुए हैं। बचाव कारकुन राजधानी के करीब इलाके में इन जलजलों के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने वेनेजुएला में इन तबाहकुन जलजलों के बाद ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन एमिस्ताद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद और कुदरती आफात की सूरत हाल में एक राहत मिशन है, जिससे वेनेजुएला के अवाम के साथ यगानगत का इजहार होता है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई के तहत भारतीय फजाइया के 2 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे कल वेनेजुएला भेजे गए थे। ये तैयारे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहत का सामान लेकर गए हैं, जिनमें बचाव टीम के 41 अरकान भी हैं। वेनेजुएला के आर्जी सदर डॉल्सी रोड्रिग्ज ने जलजलों के बाद भारत की यगानगत का इतराफ किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मुश्किल घड़ी में भारत और वेनेजुएला के अवाम के दरमियान तआवुन के जज्बे की हामिल है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे सेटा की वजह से एक नए संगमील की तरफ बढ़ रहे हैं। लंदन में कल तिजारत से मुतालिक एक मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि बहुत से शोबों की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत एक खुशी का मौका था। ये शख्सियतें मुस्तकबिल के जबरदस्त मौकों पर यकीन रखती हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों को मदऊ किया कि वो सरगर्मियों में गहराई पैदा करें, इख्तिरा को रफ्तार दें और मुश्तरका खुशहाली के लिए मजीद सरमायाकारी करें, क्योंकि सेटा से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ये कहते हुए हमले किए कि यह हमले एक दिन पहले आबनाए हुरमुज में एक माल बरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी फोर्सेज ने ईरान में मिसाइल व ड्रोन लॉन्च किए जाने के मकामात और साहिली राडार तंसीबात को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि अगर ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसे नतीजे का सामना करना होगा। इस दौरान ईरान के फौजी तर्जुमान इब्राहिम अलफकर ने कहा कि अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरानी कार्रवाई इस मरतबा ज्यादा तेज और फैसला कुन होगी। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट्स में अलफकर ने कहा कि ईरान जवाबी

0: कार्रवाई के लिए मुनासिब वक्त और जगह का इंतखाब करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने देरपा अमन व सलामती के क्याम के मकसद से इसराइल और अमरीका के दरमियान अमरीकी सालिसी पर मबनी माहिदे के फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। मुजवजा समझौते में जंगबंदी और जनूबी लबनान से हिजबुल्ला दस्तों को हटाया जाना और उसके सभी हमले रोकना शामिल है। समझौते के खाके का ऐलान करते हुए जनाब रूबियो ने इस माहिदे को इस्तेहकाम की बहाली की जानिब पहला कदम करार देते हुए कहा कि ये पेशरफ्त चैलेंज से भरी है, ताहम इस वक्त उतनी ही नागुजीर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने जैली हिमालयी मगरी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, माहे और शिमाली मशरकी भारत में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मशरकी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद गर्म लहर की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मर्दों के एफआईएच प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी अबू बकर ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए पाकिस्तान को पहले क्वार्टर में एक गोल की सबकत दिलाई। इसके बाद भारत की तरफ से अलग अलग खिलाड़ियों ने कुल 7 गोल किए। अब कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। फीफा आलमी कप 2026 में आज सुबह मैक्सिको के गॉडलाजारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरे फहरिस्त हो गया है। ग्रुप एच के एक दूसरे मैच में फीफा आलमी कप में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली टीम कैबो वर्डे सऊदी अरब के साथ बगैर किसी गोल के बराबरी पर मैच खत्म करने के बाद 32 राउंड में पहुंच गई है। यह मैच अमरीका के हॉस्टन स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले आज अमरीका के बोस्टन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दी, जबकि मैक्सिको के टोरंटो स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के एक दूसरे मैच में सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ सेनेगल 32वें राउंड में दाखिल हो गया है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बेलफास्ट में खेले गए दो T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में आयरलैंड ने भारत पर यह पहली जीत हासिल की है। जीत के लिए मुकर्रर किए गए 183 रन के निशाने को हासिल करने में भारत की टीम नाकाम रही और एक और ओवर बाकी रहते हुए पूरी टीम 148 रन के स्कोर पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा और आखिरी 20 मैच आज खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप ने वजीर खारजा ए जयशंकर के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ दो तरफा बातचीत की खबर को अहमियत दी है। बातचीत के दौरान भारत और जनूबी कोरिया ने खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को और मजबूत करने के अज़्म का इरादा किया। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुंशियात के कंट्रोल पर विजन दस्तावेज 2026-29 और NCB की सालाना रिपोर्ट 2025 का इजरा किया। इस खबर को आज के बेशतर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने 16वें भारत जापान सरबरा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 1 जुलाई को जापानी वजी अजम के भारत दौरे की खबर पर तवज्जो दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है, जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजिले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। और FIH मर्दों के प्रोलीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, इस समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में फिल्म लव स्टोरी का ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में फिल्म लव स्टोरी का ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म शेषनाग का ये गीत। गीत को एक बार फिर लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे अनुराधा पौंडवाल और सुरेश वाडकर के स्वरों में फिल्म शेषनाग का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अगला गीत सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म नागिन का ये गीत। गीत को लिखा था वर्मा मलिक ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में निदा फाजली की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म आप तो ऐसे न थे के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का।
2: सुल्तानपुर जिले में पिछले एक माह से सूर्य की तपिश का सामना कर रहे जिलेवासी मानसून के

0: आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माह भर से जिले में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा। सप्ताह भर से पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते राहगीरों के लिए जिला प्रशासन ने राजीव गांधी पार्क परिसर में अस्थायी कूल होम भी बनाया है, जहां पर पानी पीने, बैठने व आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी के चलते जिले की सामाजिक संस्थाओं ने राहगीरों के लिए अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, मिट्टी के घड़ों में निर्मल जल एवं गुड़ रखकर निःशुल्क प्याऊ सेंटर भी खोल रखे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के मंगलवार को जिले भर में वृहद स्तर पर भंडारों का आयोजन किया जाता रहा। इस सप्ताह अंतिम मंगलवार को नगर में विशेषकर चौक क्षेत्र में आयोजित भंडारों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। सुल्तानपुर जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। 7,10,223 मकानों की गणना हुई है। इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। मकान सूचीकरण के आधार पर अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 हो गई है। पहले चरण में 5,600 कार्मिकों ने डाटा एकत्र करने का काम किया। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। यह 2027 में फरवरी में शुरू होगा। इसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्यक्रम के संबंध में जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि
1: जनगणना 2027 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जनपद सुल्तानपुर में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हमारे जनपद सुल्तानपुर में 5 तहसीलों और 5 स्थानीय निकायों को मिलाकर कुल 10 चार्ज गठित किए गए थे और इन 10 चार्जों में टोटल हमारी 4390 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी पूरी टीम ने बड़ी तल्लीनता से कार्य किया और इसे समय रहते हुए पूरा किया।
0: जनपद सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पर्यावरण पार्क में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो निरंतर 12 वर्षों से निरंतर अपने राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए महाअभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता का सानिध्य पाना हम सबके लिए सौभाग्य है। उन्होंने पीएम के आह्वान को दोहराते हुए प्रत्येक दिन नियमित योग को अपनाने का नागरिकों को संकल्प दिलाया। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों ने योग को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया है। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि
2: जो मेडिसिन भी जो काम नहीं कर पाती, अगर हम नियमित रूप से योगा करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जड़ से खत्म हो गई है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल इतना बिजी रूटीन हो गया है, मोबाइल फोन, इधर टाइम नहीं मिलता है लोगों को कुछ भी करने का। अगर हाफ एन आवर या वन आवर डेली निकालें अपने शरीर के लिए तो शरीर जो है नियमित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा।
0: जनपद में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी गति मिली है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे को टांडा बांदा हाईवे से जोड़ने वाली पकड़ी बनकेपुर मार्ग का चौड़ीकरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। वहीं गोमती नदी के निरसहिया घाट पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुल बनने से तराई क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले की 35 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इधर 28 जून से जिले में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने 0 से 5 वर्ष तक के 3,56,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बूथों के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने की अपील की है।
3: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
4: गंगा दशहरा पर्व पर बुलंदशहर जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जिले के अनुपशहर आहार, नरोरा, कर्णवास, राजघाट, रामघाट सहित सभी गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात रही। स्नान को लेकर सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाटों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

0: लखनऊ में एक निजी कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक घटना के बाद बुलंदशहर में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जिले के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पुलिस प्रशासन के अफसरों के द्वारा अग्निशमन की टीम के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में आपात स्थिति में बचाव के लिए क्या इंतजाम है, उन्हें भी गंभीरता से परखा जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले भर में अलग अलग टीम बनाकर तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, साथ ही इमरजेंसी में कैसे खुद को सुरक्षित करें ये भी बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने के उद्देश्य से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 1 जुलाई से जिले भर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत घर घर संपर्क कर बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1862 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें अब तक करीब 2,00,000 बच्चों ने नए सत्र में प्रवेश लिया है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस बार ऐसे बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने पर रहेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यमुनापुरम स्टेडियम बुलंदशहर में भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की। इस अवसर पर सांसद भोला सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त मेरठ भानुचंद गोस्वामी और जिलाधिकारी बुलंदशहर कुमार हर्ष ने पौधारोपण भी किया। बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा बुलंदशहर में विशेष 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर द्वारा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जहां कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत और तकनीकी जानकारी दी गई, वहीं राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकारें जनहित में कार्य कर रही हैं, बड़ा बदलाव देश में इन 12 वर्षों में हुआ है।
1: देखिए, पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश का विकास, देश का विश्वास और देशवासियों के लिए जन कल्याण, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम, जो काम 2014 से पहले 67 सालों में पुरानी सरकार नहीं किए थे, उससे दोगुना काम, दोगुनी योजनाएं, दोगुनी संख्या सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाई है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते PATS को देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS टीम ने बुलंदशहर से 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ATS को पिछले काफी समय से इन संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिल रहे थे। पुख्ता जानकारी और सर्विलांस के आधार पर ATS की टीम ने बुलंदशहर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र जुल्फिकार और फैजान पुत्र समीमुद्दीन के रूप में हुई। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि कानून व्यवस्था और ATS के आला अधिकारी ADG अमिताभ यश ने की है।
2: दिनांक 17 जून 2026 को ATS उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
0: ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल बुलंदशहर जिले के रहने वाले सनी चौधरी ने गृह वापसी की, जो कि मर्चेंट नेवी में पिछले 1 वर्ष से तैनात हैं। उनकी ड्यूटी पानी के जहाज पर गल्फ ऑफ ओशियन में चल रही थी। 11 जून को अमेरिकन नेवी ने गल्फ ऑफ ओशियन ओमान की खाड़ी में खड़े जहाज पर हमला कर दिया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी के कहने पर रेस्क्यू किया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें भारत पहुंचाया गया है। 20 भारतीयों को सकुशल भारत भेजने की ओमान की इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर फोटो सहित सूचना की पोस्ट भी डाली है। घर पहुंचने पर सनी चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया।
3: ओमान फोर्सेस द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हम सिनास पोर्ट पहुंचे, वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको ओमान से इंडिया के लिए भेजा गया। मैं हमारी भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:25 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दिल ने फिर याद किया का ये गीत। गीतकार थे जीएल रावल, संगीतकार थे सोनिक ओमी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम और गीता दत्त व मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म सीआईडी का ये गीत।

सामने का ये गीत गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया था एस डी बर्मन ने। पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पेंगेस्ट का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार थे एसटी बर्मन। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, सुबह के 9:45 हो रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संजय उपाध्याय के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत करता है हारमोनियम पर गोपाल सिंह परमार, ढोलक पर राधा मोहन शर्मा और बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति संजय उपाध्याय के स्वरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संजय उपाध्याय के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे गोपाल सिंह परमार, ढोलक पर राधा मोहन शर्मा और बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। फिल्म का नाम है बंधन।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में फिल्म बंधन का ये गीत। गीत को लिखा था अरुण ने, संगीतबद्ध किया था आनंद राज आनंद ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं सुखविंदर सिंह और साधना सरगम की आवाजों में। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं आनंद राज आनंद। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा रहता है।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिना का ये गीत। गीत संगीत था रविंद्र जैन का। कार्यक्रम सुर सरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में फिल्म बेताब का ये गीत।

अनुराधा पौंडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नगीना का ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग शुक्ल बिलावल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर से ख्याल गायन, और आप प्रस्तुत कर रहे थे राग शुक्ल विलावल। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, रोज की तरह समय हो चला है 11 बजे, रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं आज के कलाकार कार्यक्रम। तो आज के कलाकार इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं संगीतकार राहुल देव वर्मन। आए सुनते हैं उन पर आधारित ये कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा उपाध्याय। श्रोताओं, आज हमारे इस कार्यक्रम की कड़ियां संगीत की उस जादुई दुनिया से जुड़ रही हैं जहां सुरों का एक अनोखा और अनूठा संसार बसता है। एक ऐसा संसार जिसने भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास को एक नया आयाम दिया, एक नई ऊर्जा और एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं सुरों के उस मसीहा और अद्वितीय संगीत मनीषी की, जिन्हें पूरी दुनिया पंचम दा और राहुल देव वर्मन के नाम से जानती है। आज उनका जन्मदिन है और इसी अवसर पर हम उनके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं। और श्रोताओं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे आपसे, बहुत सारी बातें हैं उनकी और इसलिए हम आज उन्हें याद कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। दोस्तों, वो एक ऐसे विलक्षण संगीतकार थे जिन्होंने न केवल पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उत्कृष्ट उपयोग किया, बल्कि जो हमारे रोजमर्रा की चीजें होती हैं दैनिक जीवन में, जो साधारण सी चीजें होती हैं जैसे सोडा की बोतल, कंगी, रेत की सरसराहट, कप्र काव्यों की

0: खनक से भी उन्होंने कालजयी धुनों का सृजन किया है। तो आइए पंचमदा के इस जादुई और संगीतमय सफर का शुभारंभ करते हैं। उनकी वर्ष 1966 में आई एक बहुत ही अच्छी और म्यूजिकल हिट फिल्म से, सदाबहार रचना, उस फिल्म से सुनिए आप फिल्म तीसरी मंजिल से ये गीत।
1: रोकी साहब ने आपके नाम चिट्ठी भेजी।
2: लेट्स सी, एक्सक्यूज मी, आप चिट्ठी भेजते हैं?
3: सोशल पोजीशन की कोई खबर नहीं हुई?
2: क्यों नहीं हजूर?

तो श्रोता, आप सुन रहे थे तीसरी मंजिल फिल्म का ये बेहद लोकप्रिय गीत। दोस्तों, इस फिल्म के संगीत ने अपने दौर में संगीत जगत में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी थी। लेकिन श्रोताओं, आइए जानते हैं ये संगीत की अद्भुत लहर कहाँ से आई थी। राहुल देव बर्मन को संगीत की ये अनमोल विधा विरासत में मिली थी। उनके पिता हिंदी सिनेमा के माने जाने जाने माने और युग प्रवर्तक कह सकते हैं उनको, संगीतकार थे सचिन देव बर्मन यानी SD वर्मन। उनकी माँ मीरा वर्मन भी एक उच्च कोटि की गीतकार थीं, और ऐसे संगीतमय वातावरण में पले बड़े राहुल देव बर्मन को बचपन में पंचम नाम मिला। इसके पीछे भी एक बड़ा रोचक किस्सा है। कहा जाता है कि बचपन में जब वे रोते या गुनगुनाते थे तो उनकी धुनी संगीत के पांचवें सुर यानी पा पंचम सुर से मेल खाती थी। एक नामी अभिनेता है हमारे यहाँ अशोक कुमार, और जब उन्होंने इस सुर में उन्हें गुनगुनाते सुना तो उन्होंने स्नेहवशी उनका नाम पंचम रख दिया। तब से वो पंचमदा हो गए। पिता के कुशल मार्गदर्शन में पंचमदा ने शास्त्रीय और लोक संगीत की बारीकियों को सीखा। हालांकि उन्होंने स्वतंत्र रूप से संगीतकार के रूप में अपने सफर की जो शुरुआत की वो थी 1961 में फिल्म छोटे नवाब। लेकिन तीसरी मंजिल फिल्म ने उन्हें भारतीय सिनेमा के आधुनिक संगीत का एक छत्र सम्राट बना दिया। आगे चलकर 70 के दशक में गायक किशोर कुमार के साथ उनकी मेल ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। जब किशोर कुमार की बात हुई और RD बर्मन की बात हो रही है तो इन दोनों के मेल का एक गाना सुन लेते हैं। तो आइए सुनते हैं अभिनेता राजेश खन्ना के अभिनय से सजा हुआ और किशोर कुमार के स्वर से सजा हुआ ये पंचमदा की जादुई धुन से पिरोया ये अमर गीत। सुनते हैं।

ये गीत दोस्तों वाकई में किशोर कुमार की एक भावपूर्ण आवाज और पंचम दा का उत्कृष्ट संयोजन संगीत की एक अमूल्य धरोहर है। श्रोताओं, राहुल देव वर्मन यानी आरडी वर्मन के जीवन और उनकी संगीत यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सुंदर अध्याय सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के बिना अधूरा है। जी हाँ, आशा जी और पंचम दा की यह जोड़ी न केवल व्यक्तिगत जीवन में हम सफर बनी बल्कि संगीत के आकाश पर भी इन दोनों ने मिलकर कला के ऐसे दीप्तिमान नक्षत्र बिखेरे जो आज भी चमक रहे हैं। आशा जी की बहुमुखी गायन शैली और पंचम दा के पाश्चात्य संगीत के प्रयोगों ने मिलकर एक नूतन एक नया इतिहास रचा। चाहे वो दम्मारो दम का पाश्चात्य अंदाज हो या पियतू अब तो आजा का तीव्र यानी जोरदार प्रभाव हो या फिर अत्यंत भावों को संजीदा रचनाएं जैसे कि पंचम दा ने आशा जी के कंठ से और हर छोटे से छोटे जो रंग निकले बड़ी कुशलता से उनको निभाया, उन्हें उभारा है। दोनों परिणय सूत्र में बंधे और कला साधना के इस रास्ते पर अंत समय तक एक दूसरे की शक्ति बने रहे। जब इन दोनों की बात हुई है तो आइए सुनते हैं इस महान जोड़ी का वह गीत जिसने कांच की खनक को भारतीय संगीत में अमर कर दिया।

श्रोताओं, आरडी वर्मन की हम बात कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम आज के कलाकार में। तो हम आपको बताएं कि आरडी वर्मन केवल एक संगीतकार नहीं बल्कि संगीत के एक अन्वेषक कह सकते हैं, रोज नित नए प्रयोग करने वाले, जो सुरों के साथ रोज नए प्रयोग करते रहते थे। सत्ते पे सत्ता फिल्म की एक खास सीन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसके लिए उन्होंने गायक से गरारे यानी गार्गल करवाए। तो वहीं शोले का जो एक बहुत सुप्रसिद्ध गीत है, एक बहुत फेमस महबूबा महबूबा, उस गाने के लिए उन्होंने म्यूजिक में अच्छा एक ट्विस्ट लाने के लिए खाली बोतलों से जो घर्षण की ध्वनि है वो की। भारतीय संगीत में इस अभूतपूर्व क्रांतिकारी योगदान के लिए उन्हें फिल्म जगत और श्रोताओं ने सदैव सर्वोच्च स्थान दिया। यदि पुरस्कारों और सम्मानों की बात करें तो पंचमदा को भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार से 3 बार नवाजा गया और उन्हें ये सम्मान सनम तेरी कसम 1982 में आई थी, ये मासूम 1983 में, और उनकी अंतिम ऐतिहासिक कृति 1942 अ लव स्टोरी ये 1994 में आई थी।

0: तीनों फिल्मों के लिए दिया गया। श्रोताओं, आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बहुत जो नए टैलेंट आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पर आरडी वर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूज़िक टैलेंट की स्थापना की गई है। और अक्सर लोगों में ये धारणा रही है कि पंचम दा केवल तेज गति और वेस्टर्न धुनों को बनाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु संगीतकार और निर्देशक गुलजार साहब के साथ मिलकर उन्होंने जो गंभीर और रूहानी संगीत तैयार किया वह सीधे अंतरात्मा को छूता है। तो आइए ऐसे ही संगीत के उसी गंभीर और अत्यंत संवेदनशील स्पर्श को इस गीत के माध्यम से देखते हैं।
1: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?

दोस्तों, ये एक ऐसा गीत जो समय की सीमाओं से परे है। श्रोताओं, समय चक्र निरंतर चलता रहा और 80 के दशक के अंत में एक ऐसा कठिन दौर भी आया जब पंचम दा को कुछ कम अवसर प्राप्त हुए, लेकिन आलोचकों ने कहा, यहाँ तक कहा कि उनका जादू अब थोड़ा हल्का पड़ गया है। परंतु प्रतिभा कभी भी विपरीत परिस्थितियों का मोहताज नहीं होती। 1994 में प्रदर्शित हुई निर्देशक विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म के संगीत के माध्यम से राहुल देव ने फिर से अपनी कला को सिद्ध कर दिया। इसके गीत लगा कि संगीत में वसीयत छोड़ी है उन्होंने, तो नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये गीत आए चले, लेकिन फिल्म फेयर की घोषणा हुई इनको मिलता उससे पहले पंचम दा इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन पंचम दा की ये धुन, उनके प्रयोग करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में आज भी चलते हैं। तो चलते चलते आकाशवाणी के कार्यक्रम आज के कलाकार, इस कार्यक्रम को मुझे यानी मनीषा उपाध्याय को दीजिए अनुमति और मुझे विदा दीजिए, और इस गाने को अंत में आप सुनिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के कलाकार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आधारित था संगीतकार राहुल देव बर्मन पर। आकाशवाणी के ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। समसामयिक विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम में आज के विषय हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। शेरे एक और टॉपिक है, शेरे पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह, उनकी पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम सुनवाया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने मनपसंद कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में, और मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा उपाध्याय। दोस्तों, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है तो यहाँ पे बातें भी होती हैं और यादों के गीत भी सजते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि आज हम अपने इस सफर में इतिहास के उस गौरवशाली पन्ने को भी पलटेंगे जिसने भारत का मान बढ़ाया, और साथ ही बात करेंगे बदलते भारत की उस मजबूत रीढ़ की जो देश के विकास को नई उड़ान दे रही है। तो चलिए बिना देर किए सुरों के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं जोश और उमंग से भरे इस खूबसूरत गीत के साथ, और बाद में बातें भी होंगी।

दोस्तों वाकई जब इरादे पक्के हों तो हर मैदान फतेह हो जाता है, और इन्हीं मजबूत इरादों के साथ आज हमारा देश मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी एमएसएमई डे। दोस्तों जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का नाम जहन में आता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे देश की आर्थिक गाड़ी का जो असली इंजन है वो हमारे देश के छोटे छोटे उद्यमी, हस्तशिल्प कलाकार और छोटे कारखाने। इसलिए एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। भारत में एमएसएमई

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के औपचारिक कानून की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुई थी। भारत सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों को एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा देने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 पारित किया था। ये कानून आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 2006 से पूरे देश में लागू हुआ। इसके बाद मई 2007 में लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को आपस में मिलाकर एक एमएसएमई मंत्रालय का गठन किया गया। इससे पहले इन उद्योगों को केवल एक लघु उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था। एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यूं ही नहीं कहा जाता दोस्तों, बल्कि सरकार द्वारा उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत व्यवसायों को कई विशेष लाभ और रियायतें भी दी जाती हैं। इसके तहत छोटे जो व्यापारी हैं उनको CGTMSE स्कीम के माध्यम से किसी सिक्योरिटी या गारंटी के लोन की सुविधा भी मिलती है। साथ ही उन्हें बैंक भी सामान्य व्यावसायिक लोन की तुलना में ब्याज दरों में 1 से लेके 1.5% की विशेष छूट भी देती है। और दोस्तों इतना ही नहीं है, ये क्षेत्र उद्यमियों को भुगतान में भी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके तहत जो खरीदार है उसको 45 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होता है और अन्यथा एमएसएमई समाधान पोर्टल के अनुसार उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज भी देनी पड़ सकती है। लेकिन ये बता दिया जाता है पहले से, तो आप सतर्क हो सकते हैं कि मुझे कब देना है। इसे ब्याज से बचने के लिए ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, इन उद्योगों को सरकारी निविदाओं यानी जो टेंडर्स होते हैं उनमें प्राथमिकता भी मिलती है। जो EMD होती है यानी बयाना जिसे राशि कहते हैं, उसमें भी छूट मिलती है। पेटेंट या बारकोड रजिस्ट्रेशन की सरकारी फीस में 50 से 80% तक की भारी जो है सब्सिडी भी दी जाती है। कई राज्यों में इन्हें बिजली बिल और शुरुआती वर्षों में टैक्स व एक्साइज ड्यूटी में भी शानदार रियायतें और रिफंड मिलते हैं, जो छोटे उद्योगों की प्रगति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत की कुल GDP में MSME का योगदान जो कितना है? जी हाँ, 30% से भी ज़्यादा है। यही नहीं, हमारे देश से होने वाले कुल जो निर्यात है यानी जो एक्सपोर्ट होता है उसमें लगभग 45 से 48% हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। और सबसे बड़ी बात, यह क्षेत्र देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार देता है। यानी कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा नौकरियां अगर कहीं से पैदा होती हैं तो वो एमएसएमई से होती हैं। चाहे वो गांव की महिला का सिलाई उद्योग हो या शहर के किसी युवा का स्टार्टअप, ये छोटे छोटे कदम ही आत्मनिर्भर भारत का सपना सच कर रहे हैं। तो चलिए देश के इन कर्मयोगियों को सलाम करते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और हम बात कर रहे हैं एमएसएमई की। तो एमएसएमई का महत्व तो सिर्फ आर्थिक नहीं है दोस्तों, बल्कि सामाजिक भी है। हर समाज, यह समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका देता है। सरकार भी इस रीढ़ को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन छोटे उद्योगों को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ रही है। आज लोकल से ग्लोबल होने का सपना हमारे देश के छोटे कस्बों से सच हो रहा है। कहते हैं ना कि मेहनत और हुनर जब साथ मिल जाते हैं तो कामयाबी का एक नया इतिहास लिखा

जाता है। और हाँ दोस्तों, इतिहास से याद आया एक ऐसे महान योद्धा की जिनकी इतिहास से मतलब हम बात करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से भी आज का दिन बड़ा खास है। वो एक ऐसे महान योद्धा जिनकी बहादुरी की मिसालें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के उस सुनहरे दौर में, लेकिन पहले एक की सुन लेते हैं।

दोस्तों, हम आज याद कर रहे हैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है और इतिहास में उनका नाम एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जिन्होंने 19वीं सदी में एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया जिसके जिसे टकराने की हिम्मत अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। मात्र 12 साल की उम्र में पिता के साय से दूर होने वाले रणजीत सिंह ने अपनी वीरता के बल पर सिख साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने न केवल पंजाब को एक सूत्र में बांधा बल्कि अमृतसर के विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है हरमिंदर साहब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसे सोने से मढ़वाया था। महाराजा रणजीत सिंह की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। उनके दरबार में जितने सिख थे उतने ही हिंदू और मुसलमान भी ऊंचे पदों पर थे। उनके राज में कभी किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया गया, ये बड़ी बात है। वो अपनी प्रजा से इतना प्यार करते थे कि जब वो निकलते थे तो लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। एक आंख की रोशनी ना होने के बावजूद भी वो कहते थे कि ईश्वर ने मुझे इसलिए एकांक दी है ताकि मैं अपनी पूरी प्रजा को एक समान नजर से देख सकूं। ऐसे महान और दूरदर्शी शासक को आज पूरा देश नमन कर रहा है।

दोस्तों, जिंदगी में हर कदम पर एक नई जंग है और इस जंग को जीतने के लिए हमें महाराजा रणजीत सिंह जैसा जंगबाज और बनना चाहिए और साथ ही उनके जैसा साहस भी चाहिए और देश को समृद्ध बनाने के लिए एमएसएमई उद्यमियों जैसी लगन भी। तो दोस्तों, आज कुछ बातें कुछ गीत में हमने इतिहास के गौरव को भी याद किया और भविष्य के भारत की आर्थिक ताकत को भी सराहा। उम्मीद है आज का यह सफर आपको बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। सुनते रहिए रेडियो और मुस्कुराते रहिए। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा उपाध्याय। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम में आज के विषय थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह, इनकी पुण्यतिथि पर ये विशेष कार्यक्रम था। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी अब हम आपको सुनवा रहे हैं। कलाकार हैं प्रेम कुमार शर्मा।

इस लोक रचना के साथ ही कार्यक्रम लोक मंजरी अब संपन्न होता है। आज आपने इस कार्यक्रम में प्रेम कुमार शर्मा के स्वर में ब्रज लोकगीत सुने। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, अब समय हो चला है हमारे कार्यक्रम नई तराने का। इस कार्यक्रम में हम नई फिल्मों से गीत आपको सुनवाते हैं। सबसे पहला गीत हमने लिया है फिल्म अंग्रेजी में कहते हैं, इस फिल्म से। इस गीत को आवाज दे रहे हैं सत्येंद्र त्रिपाठी। गीत रचना योगेश की है, संगीत रचना प्रवीण कंवर के। आइए सुनते हैं नए तराने इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

ये थे ममता शर्मा, छैल बिहारी और सिद्धांत माधव, फिल्म दशहरा में। राजेश मंथन का लिखा गीत था और संगीत सिद्धांत माधव का। नए तराने कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं हेट स्टोरी 4 से ये गीत, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन के स्वर में। गीत की रचना की है मनोज मुंतशिर ने, आरको ने संगीत दिया है।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन को अभी आप हिट स्टोरी 4 में सुन रहे थे। नई तरानी कार्यक्रम आप आकाशवाणी के आगरा केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सुनवाते हैं लैला मजनू फिल्म से ये गीत, जिसे आवाज दे रहे हैं अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी। इरशाद कामिल का लिखा ये गीत है और जिसे संगीत से संवारा है नीलाद्री कुमार ने।

शाहिद मलाया, अंतरा मिश्रा, इनको अभी आप सुन रहे थे नमस्ते इंग्लैंड फिल्म में। जावेद अख्तर की ये लिखा गीत था और मनन शाह का संगीत। नई तरानी कार्यक्रम आप आकाशवाणी के आगरा केंद्र से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत राजी फिल्म से, जिसे आवाज दे रही हैं हर्षदीप कौर, विभास शाह और शंकर महादेवन। गुलजार का लिखा यह गीत है, संगीत शंकर एहसन लॉय का।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत

0: States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue and warned that violence would receive a military response. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Assam and Meghalaya today. The Met Department predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Konkan, Goa, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Mahi and in some parts of the northeast India. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in their final Group G match. Iran's Ramin Rezaian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ाद भारत में हुकूमतों से अपील की थी कि इक्तसादी तरक्की के लिए सबसे नीचे पायदान पर बैठे शख्स के मफादात को जहन में रखकर पॉलिसियां बनाई जानी चाहिए।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों को जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
1: अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया और चढ़ावा के मामले में मुबैना बेजाबतगियों के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम 8 मुलजमीन को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुलजमीन को 29 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजमीन में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की तरफ से श्री राम मंदिर में अतियात और चढ़ावे के मुबैना गबन के सिलसिले में FIR दर्ज कराई गई थी। मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर KC वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल 79,85,000 रुपये मुलजमीन से बरामद हुए हैं। मुलजमीन को 29 जून को इंसदादे बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने FIR के इंदराज और श्रीराम मंदिर के अतिया केस में 8 मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अकीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान जो पहले मुलाजमतों के लिए हिजरत करते थे अब अपनी सलाहियतों और तवानाई को अपने इलाके में दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में महफूज माहौल की वजह से सरमायाकारी आ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक प्राइवेट एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 120 मिलियन से ज्यादा लोग मुफ्त सेहत की खिदमत हासिल कर रहे हैं।
2: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।

0: तिबी और सेहत के शोबों में मौजूदा हुकूमत की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत में पंचायत इंतखाबात में ताखीर और प्रधानों का मुद्दतकार बढ़ाने वाले हुक्म पर नाराजगी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत को तफसीली हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पंचायतों का मुद्दतकार 5 बरस के लिए होता है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले आइंदा इंतखाबात हो जाने चाहिए। यह तबसरा जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की रिट पर समाप्त करते हुए किया। रिट में रियासती हुकूमत के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन अहकामात को चैलेंज किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 की दफा 12(3)(a) का हवाला देकर इंतखाबात टाल दिए गए और प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई। रियासत में शदीद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून कल रात से मशरकी उत्तर प्रदेश के कई अजला में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 30 जून से 3 से 4 दिनों तक रियासत भर में गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम पनघट।

नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मैं आपकी सखी उमा अली और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम पनघट। सखियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो गर्मियों के मौसम में हर पशुपालक भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा विषय है आज का, गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल। बहनों, गर्मियों का मौसम केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि हमारे दुधारू पशुओं के लिए भी काफ़ी कठिन होता है। तेज़ धूप, लू, बढ़ता तापमान और ये उमस भरी गर्मी पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालती है। यदि समय रहते उचित देखभाल ना की जाए तो पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में पशुओं को सीधे धूप में नहीं बांधना चाहिए, उनके रहने की जगह हवादार और छायादार रखनी चाहिए। यदि संभव हो तो पशुशाला की छत पर फूस, टाट या घास की परत को बिछा दें, जिससे अंदर का तापमान थोड़ा सा कम बना रहे। पशुशाला के आसपास नीम, पीपल या अन्य छायादार पेड़ लगाने भी से भी पशुओं को थोड़ा सा आराम मिलता है, थोड़ी हवा मिलती है। दिन के सबसे गर्म समय यानी कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पशुओं को बाहर नहीं निकालना चाहिए। बहनों, गर्मी के मौसम में पशुओं को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। एक दुधारू गाय या भैंस को प्रतिदिन 60 से 100 लीटर तक पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए पशुओं को दिन में 3 से 4 बार साफ और ताज़ा पानी अवश्य दें। पानी के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करें, बहुत अधिक गर्म या गंदा पानी बिल्कुल ना पिलाएं। बहनों, पर्याप्त पानी मिलने से पशुओं के शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और दूध उत्पादन भी अच्छा बना रहता है। गर्मी के मौसम में पशुओं की भूख कम हो जाती है, इसलिए उन्हें पौष्टिक और आसानी से पचने वाला आहार देना चाहिए। पशुओं के भोजन में शामिल करें हरा चारा जैसे बरसीम, ज्वार, बाजरा और नेपियर घास। सूखे चारे के साथ खनिज मिश्रण और नमक और दाना संतुलित मात्रा में अवश्य दें। बहुत सूखा और खराब गुणवत्ता वाला चारा बिल्कुल ना दें, क्योंकि इससे हमारे पशुओं को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बहनों, गर्मी में अधिक पसीना आने

के कारण पशुओं के शरीर से कई महत्वपूर्ण खनिज तत्व बाहर निकल जाते हैं। इससे कमजोरी, दूध उत्पादन में कमी, प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए पशुओं के भोजन में प्रतिदिन खनिज मिश्रण मिलाएं, नमक की डली दें। यह पशुओं को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करती है। गर्मी से राहत देने का सबसे आसान तरीका है पशुओं को नियमित रूप से नहलाना। गाय और भैंस को दिन में कम से कम एक बार साफ पानी से नहलाना चाहिए। भैंस को यदि तालाब या पानी में बैठने की सुविधा मिल जाए तो और भी अच्छा है। नहलाने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, तनाव कम होता है और दूध उत्पादन में सुधार होता है। गर्मी और बरसात के मौसम में मक्खियों और मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पशु में कई बीमारियां फैल सकती हैं। इसके लिए पशुशालों को साफ रखें, गोबर और गंदगी को नियमित रूप से हटाएं। कीटनाशक दवाओं का समय समय पर छिड़काव बेहद जरूरी है। ये पशुओं के आसपास मक्खी मच्छर पैदा नहीं होने देते और पशुओं के आसपास पानी भी जमा ना होने दें। बहनों, अत्यधिक गर्मी के कारण पशुओं को हीट स्ट्रेस हो सकता है। इसके लक्षण होते हैं तेजी से सांस लेना, मुंह खोलकर हांफना, खाना कम खाना, दूध उत्पादन में कमी, अत्यधिक कमजोरी। यदि ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पशु को ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं और पशु चिकित्सक से संपर्क करें। गर्मी के मौसम में सुबह जल्दी और शाम को देर से दूध निकालना चाहिए। दूध निकालने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं, थनों को साफ पानी से साफ करें, पशु को तनाव मुक्त रखें। इससे दूध की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है और संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। गर्मी के मौसम में पशुओं में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। कृमिनाशक दवाएं दें। किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। कहते हैं कि स्वच्छ पशुशाला स्वस्थ पशुओं की पहचान है, इसलिए ध्यान रखें। गोबर को प्रतिदिन हटाएं, फर्श को सूखा रखें, पर्याप्त हवा की व्यवस्था करें और समय समय पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। बहनों, गर्मी के मौसम में थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी आपके दुधारू पशुओं को स्वस्थ रख सकती है और दूध उत्पादन में भी वृद्धि कर सकती है। याद रखिए, पशुओं को छाया दें, पर्याप्त पानी पिलाएं, पौष्टिक आहार दें, नियमित रूप से नहलाएं, साफ सफाई, स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वस्थ पशु ही एक समृद्ध किसान की पहचान होता है। इसी संदेश के साथ मैं आपको यहाँ छोड़ जाती हूँ एक मधुर गीत के साथ। आप कहीं नहीं जाएगा, अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है।

0: मैनू अभी आपने सुना अर्चना वाशनी की आवाज़ में मधुर गीत। मैनू अच्छी सेहत हज़ार नेमत है, कहते भी हैं पहला सुख निरोगी काया, व निरोगी काया का सबसे मजबूत आधार है संतुलित आहार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद व सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन शरीर को चाहिए संतुलित आहार, और यही है हमारी आज की वार्ता का विषय, स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित आहार। वार्ताकार हैं गीतेश पाठक।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ शरीर एक सपना सा होता जा रहा है। हम अपने काम, पढ़ाई या दूसरे कामों के प्रति तो पहले से अधिक सचेत हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं अपने खान पान के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज 10 में से हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है, इसीलिए मोटापा आज एक आम समस्या हो गई है। इसने बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। क्या आपने कभी सोचा है इन सब समस्याओं का कारण क्या है? गौर करने पर पता चलेगा कि इन सब समस्याओं का कारण है हमारा खान पान। गलत खान पान के कारण अनजाने में हम खुद बीमारियों को दावत देते हैं। आजकल फास्ट फूड का बहुत चलन है, इसे खाना हम अपनी शान समझते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये खाना हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है। पौष्टिक आहार तो हमारी थाली से गायब ही हो गया है। दालें, सलाद, दलिया, खिचड़ी, इन सब का स्वाद तो जैसे हम भूलते ही जा रहे हैं। पहले हमारी दादी माँ, नानी घर पर ही लड्डू मठरी बनाकर रखती थी,

किसी बच्चे को बहलाना होता था या कोई मेहमान घर पर आता था या किसी बच्चे को शाबाशी देनी होती थी, तब दादी माँ बड़े प्यार से उसे एक लड्डू और मठरी देती थी, जिससे दादी और नानी के प्यार के साथ साथ सेहत का आशीर्वाद भी मिलता था। लेकिन अब इसकी जगह पिज्जा, कुरकुरे, बर्गर ने ले ली है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम खुद तो फास्ट फूड खाते ही हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी बड़े चाव से खिलाते हैं, और मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दिल की बीमारियों से घिर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सबसे बचा कैसे जाए। आज की इस महंगाई की जिंदगी में पेट भरना तो मुश्किल है, ऐसे में संतुलित आहार कंगाली में आटा गीला करने जैसा है। इसके लिए बस आपको इतना करना है, पहले तो आप बाहर का खाना खाना बंद कर दें, अपने भोजन में दाल, मौसमी फल, हरी सब्जियां आदि का प्रयोग करें। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जी हाँ, ये कहावत 100% सच है। संतुलित भोजन ही स्वस्थ शरीर की नींव है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सभी हमारे भोजन में होना जरूरी है। संतुलित भोजन आपको स्वस्थ दिमाग के साथ साथ मजबूत शरीर भी देगा। हर इंसान के शरीर की अलग अलग जरूरतें होती हैं। जैसे एक गर्भवती महिला की जरूरत अलग है, एक बच्चे की अलग, और एक वयस्क या एक बुजुर्ग की जरूरत अलग है। बच्चे के शरीर को बढ़ने और मजबूती देने के लिए संतुलित भोजन अत्यधिक आवश्यक है। प्रतिदिन फलों का प्रयोग करें, आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे। इससे आपका समय और पैसा और सेहत दोनों अच्छे रहेंगे। प्रतिदिन थोड़े थोड़े सूखे मेवे नाश्ते में खाने की आदत डालें, ये आपको स्फूर्ति के साथ साथ ऊर्जा भी देंगे। दलिया, खिचड़ी, पोहा, उपमा नाश्ते में शामिल कर सकते हैं, ये पेट को भी ठीक रखेंगे साथ ही साथ आपको ऊर्जा भी देंगे। अपने खाने में सलाद को जरूर शामिल करें, ये आपके खाने का मजा तो बढ़ाएगा ही साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी चार चांद लगा देगा। जब हम खाना खाते हैं तब हमारा शरीर चलने, विकास, मरम्मत के लिए ऊर्जा पैदा करता है। संतुलित आहार वो है जो शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व प्रदान करे। पौष्टिक नाश्ता वह है जो विटामिन से भरपूर हो। आपके नाश्ते में फल, मिश्रित सब्जियां, अंकुरित अनाज, दाल को शामिल कर सकते हैं। सही समय पर भोजन करें, खाली पेट ना रहें। खाली पेट रहना नुकसानदायक हो सकता है, इससे शरीर में आवश्यक ऊर्जा की कमी हो जाएगी। दिन में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी मेटाबॉलिक कचड़े को गुर्दे के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी, नारियल पानी भरपूर मात्रा में पिएं। जब हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारे अंदर सुस्ती और एसिड के स्तर में वृद्धि हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर का निर्माण पोषक युक्त आहार से होता है। हठ योग प्रदीपक में आहार का वर्णन करते हुए कहा गया है, सुस्कंद मधुरा हार चतुराश विवर्जिता भुजते शिव संप्रत्यय मितहार स उच्यते। अर्थात आहार भली प्रकार से चिकना व मधुर हो, भोजन भगवान को सादर समर्पित करें और उसे प्रणाम करें। अपने पेट को थोड़ा खाली रखें, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही भोजन करना चाहिए। हमेशा ऐसा भोजन करें जो धातुओं का पोषण करने वाला हो और मन को अच्छा लगने वाला हो। भोजन केवल भूख मिटाने व पेट भरने का साधन नहीं है, इससे शरीर में रक्त, मांस, मेद, हड्डी, शुक्र बनती है, इंद्रियों को बल मिलता है। पौष्टिक व संतुलित भोजन शरीर का विकास करता है और उसे निरोगी बनाता है। हमें ध्यान रखना है कि भोजन में सभी आवश्यक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल पर्याप्त मात्रा में हों। भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। खाना खाने से आधा घंटे पहले या खाना खाने के आधा घंटे बाद ही पानी पिएं। देखा जाए तो हमारी जीभ दो ही कार्य करती है, पहला खाना खाना और दूसरा बोलना। यदि इन दोनों ही कार्यों को वश में कर लिया जाए तो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और सुखी बना रहेगा। व्यक्ति प्रकृति के जितना नजदीक रहता है उतना ही स्वस्थ रहता है, इसीलिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, अनाज, मेवों को अपने खान पान में शामिल करें। कोल्ड स्टोर में रखी हुई चीजों से परहेज करें। कुछ लोग सोचते हैं कि जितना समय हम खाना खाने में लगाते हैं वह सब बेकार चला जाता है, इसीलिए क्यों ना खाते खाते कुछ और काम भी कर लिया जाए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दो काम एक साथ करते हैं तो दोनों में से कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। अंत में

0: आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता जिसका विषय था स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित आहार। वार्ताकार थी गीतेश पाठक।

0: मैनू बरसात का मौसम जितना सुहाना लगता है उतना ही अपने साथ उमस, पसीना और बालों व त्वचा की कुछ परेशानियां लेकर भी आता है। ऐसे में आज दादी के बटुए में हम जानते हैं कुछ आसान और घरेलू उपाय जिससे हम अपनी बाल और त्वचा की देखभाल कर सकें। अगर उमस की वजह से बाल जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं या सिर में खुजली रहती है तो नीम की कुछ पत्तियों को पानी में उबाल कर ठंडा कर लें। बाल धोने के बाद इस पानी से आखिरी बार सिर धो लें। इससे सिर की सफाई बनी रहती है और सर से जुआ भी गायब हो जाती हैं। अगर बाल आपको रूखे लग रहे हों तो 2 चम्मच दही में 1 चम्मच एलोवेरा का गूदा मिलाकर 20 मिनट के लिए बालों में लगाएं, फिर धो लें। इससे बाल मुलायम और मजबूत हो जाएंगे। मैंने त्वचा के लिए बरसात में चेहरे पर पसीना और धूल जम जाती है, ऐसे में बेसन में थोड़ा सा दही या गुलाब जल मिलाकर हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। इससे त्वचा साफ और ताज़ा महसूस होती है। अगर घमोरियाँ या हल्की जलन हो रही है तो ताज़े एलोवेरा का गूदा प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं। इससे आपको ठंडक का एहसास होगा। भाई, दादी की एक छोटी सी सलाह भी है बहनों, कि गीले बालों को लंबे समय तक बांध के ना रखें। रोज़ साफ सूती कपड़े पहनें और पसीना आने पर कपड़े बदल लें। खूब सारा पानी पिएं, मौसमी फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर का असर बालों और त्वचा दोनों पर दिखाई देता है। और बहनों की अगर खुजली आ रही है, दाने या बाल झड़ने की समस्याएं बहुत ज़्यादा है या लंबे समय से बनी हुई है तो घरेलू नुस्खों पर भी निर्भर ना रहें। किसी योग्य डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। और अब समय है बहनों कार्यक्रम में एक और अंतराल का, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: बहनों, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल से बारिश की हलचल हो सकती है, और बारिश का जब हलचल होती है ना तो मन करता है कि कुछ चटपटा हो जाए शाम की चाय के साथ। तो बहनों, शाम की चाय के लिए कुछ चटपटा लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, तो जो आपको निश्चय ही बहुत ही पसंद आएगा और बहुत आसान भी है, बहुत जल्दी से बन भी जाएगा। और उस रेसिपी का नाम है मूंगफली और मक्के की चटपटी चाय। इसके लिए नोट कर लीजिए कुछ सामग्री। 1 उबला हुआ मीठा मक्का, 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली, 1 बारीक कटा प्याज, 1 बारीक कटा टमाटर, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर काला नमक और नींबू का रस। बहनों, आप अगर सामग्री पुनः नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। 1 कप उबला हुआ मीठा मक्का, 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली, 1 बारीक कटा प्याज, 1 बारीक कटा टमाटर, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर काला नमक और नींबू। इस चाट को बनाने की विधि है, 1 बर्तन में उबला हुआ मक्का व मूंगफली डालें। अब इसमें प्याज, टमाटर, मिर्च, नमक, धनिया डालकर ऊपर से नींबू का रस मिला लें। बस तैयार है 10 मिनट में स्वादिष्ट व पौष्टिक नाश्ता। आप चाहें तो इसमें अंकुरित मूंग भी मिला सकते हैं जिससे इसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी। भाई, स्वाद की भी बात हो गई, सेहत की भी बात हो गई, और अब बात करते हैं संगीत की और सुनते हैं

तो बहनों, इस आस के साथ कि कल आएगी बरसात, आज का पनघट कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी सखी उमा को अनुमति दीजिए। राम राम।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बनघट। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुगम संगीत का समय है। श्रोताओं, शुभम शर्मा से हम आपको कुछ भजन सुनवाते हैं।

अभी आपने मीरा का भजन सुना। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए अगली भक्ति रचना सुनते हैं।

संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने शुभम शर्मा के स्वर में भजन सुने। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।

0: World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
4: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
2: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
5: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन

0: कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
2: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिप्को, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
3: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे

0: नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CUCI थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में

ये आगरा का आकाशवाणी केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे दोपहर की सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पंडित रामकृष्ण क्लेरिनेट प्रस्तुत करेंगे और इस पर आप प्रस्तुत कर रहे हैं मिस्र पहाड़ी धुन। आइए सुनते हैं।

सुनवाते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। तो आइए सुनते हैं मान अभिमान फिल्म से ये गीत, हेमलता का गाया हुआ। गीत संगीत रविंद्र जैन का है।

पंडित मोहित कुमार से अभी आप पहाड़ी धुन गिटार पर सुन रहे थे। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अब उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। पुरानी फिल्मों से गीत हम

ये थी किशोर कुमार फिल्म दूर का राही में। ए इरशाद का लिखा ये गीत था और संगीत किशोर कुमार का। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रफ्तार फिल्म से। आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना वर्मा मलिक की।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए रफ्तार फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 3 बजे हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम में सबसे पहले लता मंगेशकर।

आशा भोसले को अभी आप धन दौलत फिल्म में सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना थी और संगीत रचना आर डी वर्मन की। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से हम आपको सुनवा रहे हैं गीत गुंजन कार्यक्रम फिल्म संगीत का। ये कार्यक्रम प्रतिदिन 3 बजे होता है, तो आइए इस कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा के स्वर में फिल्म एक दूजे के लिए से ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा हुआ और संगीत पत्र किया इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गवाही फिल्म में अभी अनुराधा पौंडवाल और पंकज उदास के सुर में ये गीत आप लोगों ने सुना। सरदार अंजुम का लिखा ये गीत था, उत्तम सिंह का संगीत। फिल्म का नाम था गवाही। कार्यक्रम का अंतिम गीत होटल फिल्म से हम सुन रहे हैं, मनोहर उदास और आशा भोसले के सुर में। शब्द रचना इंदीवर की है और संगीत रचना उषा खन्ना की।

मनहरा दास और आशा भोसले की गाए होटल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र मीडियम वेव 196.1 मीटर पर श्रोताओं दोपहर के 3:30 हुए हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक हिंदी में समाचार, जिनका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का

0: समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी

0: पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और ज्वेसास जोस्टेन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। शाम के 5:05 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। 5:30 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 हमारे ग्रामीण साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक। शाम 6:30 पर हमारे मजदूर भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। शाम 7:10 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम विविधा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंटवार्ता, भारतीय उद्योग उन्नयन में MSME का योगदान। इस विषय पर आप सुनेंगे वार्ताकार महेश कुमार शर्मा से अनिंद सिंह की बातचीत। शाम 7:31 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से चित्रपट संगीत। ये थी हमारे केंद्र से आज के द्वितीय सभा के कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोता अब जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल प्रथमकालीन सभा के कुछ कार्यक्रमों और द्वितीय सभा के कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर श्रोता सुनेंगे वंदना।

6:45 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। वार्ता होगी डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन और वार्ताकार होंगे डॉक्टर यूडी गुप्ता। सुबह 7:10 पर कल श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। वार्ता होगी बांझपन कारण और उपचार। वार्ताकार होंगी डॉक्टर परिणीता बंसल। कल सुबह 7:31 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आसपास। आठ बजकर 45 पर आप सुन सकेंगे सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। सुबह 9:25 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम गीत मंजूषा। सुबह 10 श्रोता सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरसरता। दिन के 11 श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात। दोपहर 12 श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम लोकमंजरी। दोपहर 1:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम बाल मंडल। दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कल शाम 6 श्रोता सुनेंगे ग्राम्य लोक। 6:30 पर हमारे मजदूर भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। 7:10 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। शाम 7:31 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

रात्रि 8 बजे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गाने नए पुराने। रात्रि 8:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। तो ये था कार्यक्रम विवरण, जिसके अंतर्गत आपने जाने हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी एवं उनका प्रसारण समय। इसके साथ ही आपने जाना कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी एवं उनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे भक्ति पर्व फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सोर संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गीत गाता चल से ये भक्ति परत गीत, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं आरजे मुखर्जी और जसपाल सिंह ने। संगीत निर्देशन है रविंद्र जैन का और इस गीत को शब्द दिए हैं रविंद्र जैन ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं भक्ति परक फिल्म संगीत कार्यक्रम सुर संध्या आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला भक्ति परक गीत आप सुनेंगे फिल्म जय संतोषी माँ से, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं महेंद्र कपूर और साथियों ने। संगीत निर्देशन है सी अर्जुन का और इस गीत को लिखा है प्रदीप ने।

फिल्म जय संतोषी माँ से इस भक्ति परक फिल्म संगीत के बाद आइए श्रोता सुनते हैं यह अगला भक्ति परक गीत फिल्म अपने पराये से, जिसमें अपनी आवाज दी है येशुदास ने। संगीत निर्देशन है बप्पी लहरी का और इस गीत को लिखा है योगेश ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोता भी सुन रहे थे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। हमारे युवा साथी अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम युव वाणी।

आकाशवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आपकी रेडियो साथी प्राची स्वागत करती हूं अपने सभी युवा साथियों का उनके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे और इस गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखकर अपना ध्यान रख रहे होंगे। कड़ी धूप में बाहर निकलने से बचिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। भरपूर नींद लेकर अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर और सकारात्मक मन ही हर सफलता की असली नींव है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, जिसमें हम करेंगे विशेष चर्चाएं, साझा करेंगे महत्वपूर्ण जानकारियां और सुनेंगे अपने पसंदीदा गीत भी। साथियों, आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने युवा साथियों से एक सवाल के साथ। यदि मैं आप सभी से पूछूं कि इस समय आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, तो शायद ज्यादातर जवाब होंगे एक अच्छी नौकरी, करियर में स्थिरता, अपने पैरों पर खड़ा होना। और सच भी यही है, आज नौकरी सिर्फ एक सैलरी नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर बनने का पहला कदम है। इसलिए जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो उसके केंद्र में सबसे पहले युवा और रोजगार आते हैं, क्योंकि अगर देश का युवा मजबूत होगा तभी देश विकसित होगा। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है।

0: सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और सरकारी योजना है या वास्तव में युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर? आइए इसे समझते हैं। सरकार का लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगारों का को प्रोत्साहित किया जाए, जिसके लगभग 99,446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस योजना की सबसे अच्छी बात सिर्फ ये संख्या नहीं है, बल्कि इसकी सोच है। सोच ये है कि युवा केवल किसी तरह नौकरी ना करें, बल्कि औपचारिक रोजगार से जुड़ें, जहां उन्हें EPF, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी मिले। जरा सोचिए, अगर 2 लोगों की सैलरी समान हो, लेकिन एक व्यक्ति को EPF, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले और दूसरे को ना मिले, तो लंबे समय में ज्यादा सुरक्षित कौन होगा? यही अंतर ये योजना समझाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें युवाओं को सीधे क्या मिलेगा। अगर कोई युवा पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नौकरी करता है और पात्रता की शर्तें पूरी करता है, तो उसे 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन 2 किश्तों में दिया जा सकता है। दूसरी ओर जो कंपनियां नए कर्मचारियों की भर्ती करेंगी, उन्हें भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा। यानी इस योजना में सिर्फ नौकरी तलाशने वाले को ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले को भी प्रेरित किया गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन दोस्तों, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगी, सिर्फ योजनाएं बन जाने से रोजगार नहीं बढ़ते, और ये बात हम दोनों ही जानते हैं। योजनाएं तभी सफल होती हैं जब युवाओं तक उनकी सही जानकारी पहुंचे और युवा भी खुद को उसके लिए तैयार करे। आज भी कई युवा नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उनकी कंपनी EPFO में पंजीकृत है या नहीं, उन्हें औपचारिक कर्मचारी माना जा रहा है या नहीं, या वे उन सरकारी लाभों के पात्र हैं या नहीं। जानकारी की कमी कई बार अवसरों को हमसे दूर कर देती है। लेकिन यहां मैं आप सबसे एक और सवाल पूछना चाहती हूं, क्या केवल सरकारी योजना हमारे करियर की गारंटी बन सकती है? शायद नहीं, क्योंकि आज का समय सिर्फ डिग्री का नहीं, बल्कि स्किल का समय है। अगर हमारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल स्किल्स, नई टेक्निक्स को समझ, AI का बेसिक नॉलेज और सीखने की इच्छा होगी, तो ऐसे अवसरों का लाभ उठाना हमारे लिए कहीं आसान हो जाएगा। यानी सरकार अवसर दे सकती है, लेकिन उस अवसर के योग्य बनना हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि यही विकसित भारत की असली सोच भी है, सरकार अवसर दे और युवा अपनी मेहनत से उन अवसरों को उपलब्धि में बदल दे। अंत में मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जब भी किसी नई सरकारी योजना की बात हो, तो उसे सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट या अखबार की हेडलाइन बनाकर मत छोड़िए। उसकी जानकारी लीजिए, समझिए कि वो आपके लिए कैसे उपयोगी है, और अगर वो आपके किसी दोस्त, भाई बहन या परिवार के सदस्य के काम आ सकती है, तो उन्हें भी जरूर बताइए, क्योंकि जागरूक युवा ही सशक्त युवा होता है, और सशक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत होता है। इसी के साथ चर्चा को दूंगी विराम और बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की ओर। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके मन में कोई नया बिजनेस आइडिया हो या आप अपना छोटा सा उद्यम शुरू करना चाहें, तो सबसे पहली जरूरत क्या होगी? सही मार्गदर्शन, अवसर और आर्थिक सहयोग, है ना? इन्हीं जरूरतों का ध्यान रखते हुए सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, नए रोजगार के अवसर पैदा करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। और जब बात उद्यमिता और रोजगार की होती है, तो MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हें यूं ही राष्ट्र की उत्पादक व्यवस्था की रीढ़ नहीं कहा जाता। आइए इसी विषय पर आधारित ज्ञानवर्धक वार्ता सुनते हैं। राष्ट्र की उत्पादक व्यवस्था की रीढ़ है MSME। वार्ताकार हैं आयुषी कुकरेजा।
1: वर्तमान समय में भारत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य। ये लक्ष्य एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और अवसरों से भरपूर हो, जहां देश की प्रगति में प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो। इस विकसित भारत के निर्माण के लिए एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत है जिसमें बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्यम और स्थानीय व्यवसाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। देश के अलग अलग हिस्सों में फैले लाखों छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय उत्पादन, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं उद्यमियों को हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अर्थात MSME के नाम से जानते हैं। आकार में छोटे होने के बावजूद भी MSME का योगदान बहुत बड़ा है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करते हैं, बड़े उद्योगों को सहयोग देते हैं और आर्थिक विकास का लाभ समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुँचाते हैं। यही कारण है कि MSME को देश की उत्पादक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन आज जिस रूप में हम MSME क्षेत्र को

0: देखते हैं, ये एक लंबी विकास यात्रा का परिणाम है। भारत में छोटे छोटे उद्योगों का महत्व हमेशा से रहा है, लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया है कि इन्हें एक स्पष्ट पहचान और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। इसी दिशा में वर्ष 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट लागू किया गया, जिसने पहली बार माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को एक संगठित ढांचे के अंतर्गत परिभाषित किया। शुरुआत में एमएसएमई का वर्गीकरण केवल निवेश के आधार पर किया जाता था, लेकिन वर्ष 2020 में इसमें बदलाव करते हुए निवेश के साथ साथ टर्नओवर को भी शामिल किया गया और मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस सेक्टर के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया। इन बदलावों का उद्देश्य एमएसएमई फ्रेमवर्क को अधिक सरल और इंक्लूसिव बनाना था, ताकि यह उद्यम अपने विकास के साथ साथ सरकारी सहायता और सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त कर सके। एमएसएमई की ये विकास यात्रा केवल नीतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र भारत के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में लगभग 35%, एक्सपोर्ट्स में लगभग 48% और जीडीपी में 31% का योगदान देता है। आज देश में करोड़ों एमएसएमई इकाइयां सक्रिय हैं, जो करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। कृषि क्षेत्र के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इन आंकड़ों का महत्व केवल संख्या तक सीमित नहीं है, ये बताते हैं कि एमएसएमई भारत में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। एमएसएमई की भूमिका रोजगार सृजन के क्षेत्र में सबसे अधिक दिखाई देती है। भारत जैसे युवा देश में हर वर्ष लाखों लोग रोजगार की तलाश में कार्यबल में शामिल होते हैं। ऐसे में रोजगार के नए अवसर पैदा करना एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। बड़े उद्योगों में पूंजी और तकनीक की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए उनकी रोजगार क्षमता सीमित हो सकती है। इसके विपरीत एमएसएमई कम पूंजी में भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। एक छोटा उद्योग अपने साथ सप्लायर्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कच्चे माल से जुड़े व्यवसायों और अन्य सहायक गतिविधियों का पूरा नेटवर्क विकसित करते हैं। रोजगार के बाद एमएसएमई का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है आर्थिक विकास को देश के हर हिस्से तक पहुंचाना। हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास पैदा करता है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि क्षेत्रीय असमानताएं भी कम होती हैं और लोग अपने ही क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब यदि हम औद्योगिक विकास की ओर देखें तो एमएसएमई की भूमिका और भी स्पष्ट हो जाती है। अक्सर छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से अलग माना जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई आवश्यक पुर्जे, सेवाएं और तकनीकी सहयोग के माध्यम से बड़े उद्योगों की उत्पादन श्रृंखला को मजबूत बनाते हैं। लेकिन एमएसएमई का योगदान केवल उत्पादन और उद्योग तक सीमित नहीं है। आज विकास का अर्थ सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि ऐसा विकास है जिसमें समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के अवसर मिले। एमएसएमई महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करते हैं, नए और बेहतर उत्पादन तरीकों को अपनाने में मदद करते हैं तथा डिजिटल तकनीक के माध्यम से बाजार तक पहुंच आसान बनाते हैं। इस प्रकार एमएसएमई भारत के आर्थिक विकास को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि एमएसएमई क्षेत्र की उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। वित्त तक आसान पहुंच अभी भी एक बड़ी समस्या है। कई छोटे उद्यमों के पास क्षमता और अच्छे विचार होते हैं, लेकिन पर्याप्त पूंजी की कमी के कारण वे अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाते। इसके अलावा आधुनिक तकनीक अपनाना, बड़े बाजारों तक पहुंचना और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त करना कई एमएसएमईयों के लिए चुनौती बना हुआ है। अंत में ये समझना महत्वपूर्ण है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे प्रयासों से ही शुरू होते हैं और एमएसएमई इसी सोच का सबसे मजबूत उदाहरण है। ये स्थानीय संसाधनों को उपयोगी उत्पादों में बदलता है, लोगों के कौशल और मेहनत को आर्थिक अवसरों में परिवर्तित करते हैं और देश की उत्पादन क्षमता को मजबूत बनाते हैं। ये मजबूत एमएसएमईज विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में एमएसएमई भारत की उत्पादक अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि ये उत्पादन, रोजगार और विकास को एक मजबूत दिशा प्रदान करते हैं।
1: साथियों, हम सुन रहे थे आयुषी कुकरेजा को, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे राष्ट्र की उत्पादक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है एमएसएमई। इसी के साथ इन ज्ञानवर्धक चर्चाओं को देते हैं विराम और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना है। हमारे देश में जब भी भारत का वर्ल्ड कप मैच होता है तो सड़कें सूनी हो जाती हैं, टीवी के सामने पूरा परिवार बैठ जाता है और आखिरी ओवर तक सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। यही बताता है कि क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल, क्या भारतीय टीम तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ आईपीएल से होकर जाता है? नहीं, असल में भारतीय क्रिकेट की मजबूत नींव जिस टूर्नामेंट पर टिकी

ही है, उसका नाम है रणजी ट्रॉफी। इसी रणजी ट्रॉफी की हाल ही में खूब चर्चा हुई क्योंकि 2025-26 सीजन में जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में उसने कर्नाटक को पहली पारी में बढ़त के आधार पर हराया। लगभग 91 वर्षों के इतिहास में ये जम्मू कश्मीर की पहली रणजी ट्रॉफी जीत है। ये सिर्फ एक टीम की जीत नहीं बल्कि इस बात का संदेश भी है कि प्रतिभा देश के हर कोने में मौजूद है। अब सवाल ये है कि आखिर रणजी ट्रॉफी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे प्रतिष्ठित फर्स्ट क्लास घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। इसका नाम महान क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के नाम के सम्मान में रखा गया है। यहाँ खिलाड़ी 5 दिन तक चलने वाले मैच खेलते हैं जहां सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी नहीं बल्कि धैर्य, तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होती है। यही वजह है कि इसे भारतीय क्रिकेट की असली पाठशाला कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी खिलाड़ी को 20 ओवर नहीं बल्कि पूरे 5 दिन लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़े तो उसकी असली क्षमता वहीं सामने आती है। इसी मंच से निकलकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा जैसे कई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम तक का सफर तय किया। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी एक और वजह से चर्चा में रही। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि आज आईपीएल की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में सफल होना है तो रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन आज भी सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। यानी आईपीएल आपको स्टार बना सकता है लेकिन रणजी ट्रॉफी आपको मजबूत क्रिकेटर बनाती है। और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ क्रिकेट पर ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हर बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत तैयारी होती है। जो लोग सिर्फ चमक देखते हैं वे संघर्ष नहीं देख पाते, लेकिन जो संघर्ष से गुजरते हैं वही एक दिन सबसे ज्यादा चमकते हैं। इसीलिए रणजी ट्रॉफी सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और निरंतरता की पहचान है। साथियों, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर, ताकत वतन की हमसे है। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि है। ये वो दिन है जब हम एक ऐसे सैनिक, एक ऐसे सेना नायक और एक ऐसे इंसान को याद करते हैं जिसने अपने साहस, ईमानदारी और नेतृत्व से भारतीय सेना के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं पड़ती। सैम मानेकशॉ ऐसा ही एक नाम है। उन्हें लोग सिर्फ उनके पद से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व से जानते थे। उनकी वर्दी पर सितारे थे लेकिन उनके शब्दों में सादगी, फैसलों में स्पष्टता और दिल में सिर्फ एक ही बात थी, भारत सबसे पहले। सैम मानेकशॉ का एक मशहूर कथन है, इफ अ मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज आइदर लाइंग और ही इज अ गोरखा। इस एक वाक्य में उनका हास्य भी दिखता है, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान भी और वो आत्मविश्वास भी जिसने उन्हें लाखों जवानों का प्रिय सेनापति बना दिया। लेकिन साथियों, महान लोग सिर्फ अपने शब्दों से नहीं अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। साल 1942, द्वितीय विश्व युद्ध का समय, बर्मा मोर्चे पर लड़ाई के दौरान सैम मानेकशॉ के शरीर में कई गोलियां लगी। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए अपना मिलिट्री क्रॉस उनके सीने पर लगाकर कहा, अ डेड मैन कैन नॉट बी अवॉर्डेड अ मिलिट्री क्रॉस। शायद इस किस्मत भी जानती थी कि इस सैनिक का सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। वो मौत को हराकर वापस लौटे और आगे चलकर वही सैनिक भारत का पहला फील्ड मार्शल बना। लेकिन अगर पूरी दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा किसी बात के लिए याद करती है तो वो है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। उस समय पूरे देश में युद्ध का माहौल था, हर तरफ आवाज उठ रही थी अभी हमला कीजिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा, क्या हमारी सेना तैयार है? जरा सोचिए, ऐसे समय में कितने लोग होते हैं जो सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए हाँ कह देते। लेकिन सैम मानेकशॉ अलग थे। उन्होंने साफ कहा, अगर आप युद्ध चाहती हैं तो मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं सैनिक हूं, लेकिन अगर जीत चाहिए तो मुझे तैयारी का समय दीजिए। यही एक सच्चे नेता की पहचान होती है। लोकप्रिय फैसला लेना आसान होता है, लेकिन सही फैसला लेना, चाहे वो उस समय कितना भी कठिन क्यों न लगे, वही असली नेतृत्व है। कुछ महीनों की तैयारी के बाद युद्ध शुरू हुआ और सिर्फ 13 दिनों में भारत ने ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसकी मिसाल आज भी दुनिया देती है। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था
और इसी विजय के साथ बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में

अस्तित्व में आया। लेकिन मुझे लगता है कि सैम मानेकशॉ की सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीति नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका चरित्र। उनका एक प्रसिद्ध और कथन है, प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आर द क्वालिटीज दैट काउंट, यानी सिर्फ पद या अधिकार नहीं बल्कि आपकी योग्यता और ईमानदारी ही आपको महान बनाती है। दोस्तों, आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना सिर्फ इतिहास को दोहराना नहीं है, उन्हें याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। साहस का मतलब सिर्फ बंदूक उठाना नहीं, उन्हें याद साहस का मतलब है सच बोलना, सही निर्णय लेना और राष्ट्रहित को हर व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हमें सिखाया है कि एक सैनिक की असली ताकत उसकी वर्दी में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है। और शायद इसलिए आज भी जब भारतीय सेना के महान सेना नायकों का जिक्र होता है तो एक नाम पूरे सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाता है, फील्ड मार्शल सैम बहादुर। दोस्तों, इसी के साथ उन्हें याद करते हुए सुनते हैं फिल्म सैम बहादुर से ये उत्साहपूर्ण गीत।

लिए गर्व का पल लेकर आई है। भारतीय स्टार्टअप जगत के लिए ये एक सप्ताह ऐतिहासिक रहा। क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह को दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है। वो बिल कैथकार्ट की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि भारतीय प्रतिभा अब सिलिकॉन वैली के शीर्ष नेतृत्व में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही है। अब बात महिला सुरक्षा की। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में शहर का पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया। इस थाने में SHO से लेकर कांस्टेबल तक पूरा स्टाफ महिला कर्मियों का है, ताकि महिलाएं बिना किसी झिझक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अब चलते हैं अंतरिक्ष जगत की ओर। बेंगलोर में ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी सदस्य देशों ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा की साझा करने पर सहमति जताई। इससे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को बेहतर सामना करने में बड़ी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश के कई प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय क्रिकेट जगत के दिग्गज रोहित शर्मा को पद्मश्री, मशहूर पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता आर माधवन, ममूती और टेनिस जगत दिग्गज विजय अमृतराज सहित कई हस्तियों को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान मिला। और आखिर में एक दिलचस्प खबर आसमान से। खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। 29 जून की रात आसमान में खूबसूरत स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा। ये इस साल का आखिरी माइक्रो मून होगा, जो अपनी अनोखी चमक और आकर्षक नजारे के लिए खास माना जा रहा है। इन्हीं खबरों के साथ समय हुआ है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय कई चर्चाओं के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। अपनी रेडियो साथी प्राची को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

हमारे युवा साथी भी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। शाम के ठीक 6 बजे हैं। हमारे ग्रामीण भाई बहन अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम में लोक।

स्वागत है आप सभी किसान भाइयों बहनों का आपके अपने ग्रामीणों कार्यक्रम में। और साथियों, आज फिर से आप सबकी सेवा में पुनः हाजिर होने का मौका मिला है आपके साथी देवेंद्र को। तो सबसे पहले तो स्वीकार कीजिए हमारा राम राम। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने हमारे जीवन में एक नई उमंग भर दी है। देखिए, होता क्या है कि हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोगों के पास खूब साधन होते हैं, खेती होती है, कुछ लोगों के पास कम खेती होती है और कुछ लोगों के पास होती ही नहीं है। अब भैया, खेती है कोई रबड़ थोड़ी है कि बढ़ाते चले जाएंगे और बढ़ती चली जाएगी। और आप तो जानते ही हैं कि खेती लगातार कम ही होती चली जा रही है। तो इसीलिए हमारी सरकार ने सोचा कि क्यों ना हमारे उन भाइयों के लिए भी कुछ काम किया जाए, उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वे भी एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और अपना कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर सकें। और जानते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत बिना गारंटर के हमें लोन दिया, यानी कि ऋण दिया जाता है और जिसकी पहली किस्त 10,000 रुपये होती है, जिससे हम जो शहरों में या कस्बों में सब्जी बेचने का काम

फलों को बेचने का काम या किसी भी तरह की फेरी लगा सकते हैं, जो काम हमारी पहुंच में हो वो काम हम कर सकते हैं। और इस योजना की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, तो वो ये है कि अगर हमने जो ऋण लिया है उस ऋण को हम एक साल के भीतर जमा कर देते हैं तो दोबारा हम जब ऋण लेंगे तो हमें 20,000 रुपये मिल जाते हैं, और इसी तरह अगर एक साल के भीतर हम फिर जमा कर देंगे तो जब हम तीसरी बार ऋण लेने जाएंगे तो हमें 50,000 रुपये ऋण के तौर पर प्राप्त हो जाएंगे। और पता है जो ऋण हम लेते हैं ना उस ऋण पर जो ब्याज लगता है उस ब्याज की 7% तक की भरपाई हमारी सरकार द्वारा की जाती है। तो एक तरह से कहें तो ये ऋण हमें बहुत ही कम या कहें कि बिना ब्याज के ही मिलता है। बस इतना ज़रूर है कि समय पर ऋण अदा करते रहिए और अपना काम चलाते रहिए। तो पहुंचिए जनसेवा केंद्र पर, या अगर हमको तकनीकी जानकारी है तो PM स्वनिधि की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां जाकर

0: मिलता है। बस इतना जरूर है कि समय पर ऋण अदा करते रहिए और अपना काम चलाते रहिए। तो पहुंचिए जनसेवा केंद्र पर, या अगर हमको तकनीकी जानकारी है तो पीएम स्वनिधि की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां जाकर घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो बात हुई हमारे उन साथियों की जो शहरों में या कस्बों में फलों की सब्जियों की बेचना चाहते हैं रिटेलर पर जाकर उनकी। अब बात कर ली जाए अपने किसान भाइयों की। तो भैया, इस समय हमारे जो किसान भाई हैं वो आने वाली फसल की बुआई की तैयारी में लगे होंगे, और कुछ साथियों को तो अभी से चिंता सता रही होगी कि खाद बीज और लागत यानी कि रुपए पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जाए। तो आपको भी किसी प्रकार की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने हमारे और आपके लिए भी बहुत कुछ सोच रखा है। तो क्या सोच रखा है, इसी विषय में जानने के लिए हम पहुँचे एक सहकारी समिति में।
1: हम मौजूद हैं सहकारी समिति में, और हम सहकारी समिति में इसलिए आए हैं क्योंकि ये जानने के लिए इससे हम किसानों को क्या लाभ है। तो हमारे बीच इस समय मौजूद हैं सहकारी समिति के जो सचिव हैं, वो आइए उनसे हम सीधी बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, आप अपना नाम बताएं।
2: रामवीर सिंह।
1: अच्छा, रामवीर सिंह जी, आप सहकारी जो समिति है उसके सचिव हैं
2: जी।
1: तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सहकारी समिति का जो गठन किया गया है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई है ये समिति?
2: ये समिति किसानों के लिए बनाई गई, उनकी फसल को तैयार करने के लिए, हमें खेती की तैयारी के लिए उनको केसीसी नगद रेट देते हैं, खाद बीज खाद उनको उपलब्ध कराते हैं, और उनकी जब फसल तैयार हो जाती है
1: जी।
2: तो उनसे वसूली कर ली जाती है, अल्पकालीन ऋण है ये, या फसली ऋण कहिए, और अच्छे बीज उपलब्ध किए जाते।
1: आपका कहने का मतलब है कि बीज हो गया, खाद हो गई, ऋण हो गया, बुआई के समय कुछ जरूरत पड़ती है पैसों की, तो वो सारी सुविधाएं समिति के जरिए किसानों को दी जाती है। अच्छा, तो सभी किसानों को दी जाती हैं कि जो इस समिति के सदस्य होते हैं उन्हें दी जाती हैं?
2: खेती हो उनके पास
1: जी,
2: वो हमारे मेंबर बने।
1: अच्छा, मेंबर बने आप, तो मेंबर कैसे बने वो, कैसे उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है?
2: उसके लिए हमारे यहाँ केसीसी फॉर्म होता है, पहले तो हम उनका रसीद काटते हैं, मेंबर बनाते हैं।
1: मेंबर कैसे बनाते हैं?
2: 226 रुपए लेकर के उनको मेंबर बनाते हैं।
1: मेंबर के लिए उन्हें क्या क्या कागजातों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या कागजात आपको देने पड़ेंगे?
2: उनको आधार, मेंबर बनने के लिए केवल आधार देना होगा
1: जी।
2: जब वो केसीसी बनवाएंगे या हमारे यहाँ ऋण लेंगे
1: जी,
2: तो उनको खतौनी, खसरा और एक एफिडेविट केसीसी के लिए।
1: अच्छा, अगर केसीसी बनवानी हो तो, और मेंबर बनना हो तो केवल एक आधार कार्ड देना पड़ेगा, और वो शुल्क के तौर पे
2: 226
1: रुपए। अच्छा, ये हर वर्ष देना पड़ता है कि अपने लाइफ टाइम में एक बार?
2: लाइफ टाइम
1: एक बार, मतलब 226 से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, पंजीकरण करवा लीजिए, मतलब समिति के सदस्य बन गए। तो फिर उसके बाद उन्हें किस हिसाब से खाद बीज और ये सब चीजें मिलती हैं, क्या प्रोसेस रहता है खाद बीज का? या
2: खाद के लिए उनका जो हम है आवेदन कराते हैं, केसीसी भरवाते हैं, और उनकी जो लिमिट होती है उसके अनुसार उन्हें नगद और खाद उपलब्ध कराएगा।
1: नगद मतलब
2: नगद, हम नगद पैसा भी देते हैं।
1: अच्छा, नगद पैसा भी देते हैं
2: केसीसी?
1: केसीसी उनके बैंक खाते में जाता होगा सीधा सीधा, या आपके जरिए हाथों हाथ?
2: नहीं नहीं, बैंक खाते में मिलता है, बैंक में उनका खाता खुलवाया जाता है, उसी खाते में उनका ट्रांसफर होता है, वो अपने
1: निकाले खर्च करें। अच्छा, क्या ब्याज की प्रक्रिया क्या रहती है इसकी?
2: ब्याज हमारे यहाँ बहुत कम है।
1: कितना है?
2: 3% ब्याज
1: सालाना।
2: सालाना
1: 100 रुपए पे 3 रुपए एक साल में? एक साल जैसे किसी कारण जमा नहीं करवाया, एक साल के बाद अगर जमा कर रहा है तो कितना ब्याज देना पड़ता है
2: उसको? 10.70 देना होता है,
1: मतलब 3 से सीधा 10 रुपए, 10 एक साल के बाद, एक साल के अंदर अंदर जमा कर रहा है तो 3 रुपए। अच्छा सर, खाद का क्या प्रोसेस रहता है, खाद किस हिसाब से वितरण की जाती है?
2: खाद तो उसकी जोत के आधार,
1: जोत के आधार पे खाद। और अच्छा, बीज का क्या रहता है, किस कौन कौन से बीज यहाँ से उपलब्ध कराए जाते हैं?
2: हमारे यहाँ से गेहूं का बीज और जैसे धान का भी आता है।
1: यहाँ पे सब्सिडी भी मिलती है?
2: हाँ, सब्सिडी मिलती।
1: अच्छा, ये तो प्रक्रिया हुई खाद बीज की, और लेकिन इसकी जो वसूली के लिए आपने कहा, जब वसूलने जाते हैं तो वो एक साल में जाते हैं कि बीच बीच में, किस फसल बाई फसल?
2: वैसे तो ये फसली तो फसल पे हो,
1: ये फसल जैसे आपने धान पे लिया तो धान के बाद जमा कर दीजिए,
2: जमा का त्याग रहता है। लेकिन कोई किसान जैसे नहीं कर पाते, होता है
1: एक साल के बाद। अच्छा कोई किसान नहीं दे रहा है, डिफॉल्टर हो गया सपोज कीजिए, उसने जमा ही नहीं किया, तो ऐसे किसानों पे आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं?
2: और कार्रवाई क्या करते हैं, उनसे वसूलने की कोशिश करते हैं, वसूलते हैं, और यद रह जाता है तो उसे ब्याज दर ज्यादा देने पड़ती है।
1: उनकी जमीन जोत पे क्या वो बंधक बनाते हैं?
2: बंधक।
1: अच्छा बंधक बना लेते हैं।
2: जैसे को हमारे यहाँ कोऑपरेटिव में अभी तक ये नियम है 1.5 लाख

0: हम उन्हें बगैर बंधक के देते हैं,
1: 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं बगैर बंधक के दे देते हैं।
0: लेकिन अब ये आदेश हो रहा है कि हमें बंधक ही चाहिए, किसानों की जमीन बंधक
1: बंधक करके आप। अच्छा, इसका भी कोई रेशियो निकाला जाता होगा, इतनी जमीन पे इतना ऋण या लोन देना है?
0: हाँ, वो एक समिति बनी हुई है जिले पर
1: जी,
0: तो वो निर्धारित करती है रेट, उसके अनुसार उनकी केसीसी लगाई।
1: भूमि पे भी डिपेंड करता है कि भूमि कितनी उपजाऊ है, बंजर है, कैसी क्या, ये भी देखते हैं क्या?
0: नहीं, ये तो नहीं, भूमि तो उपजाऊ है,
1: मतलब उसके उत्पादकता के अनुसार ऋण देते हो या ऐसा कुछ है? अच्छा अच्छा सर, एक चीज और पूछना है कि जैसे मान लीजिए आपके इस समिति में कितने गाँव सम्मिलित किए गए हैं?
0: समिति में तो काफी गाँव है,
1: मतलब बहुत गाँव है। मान लीजिए हमारा गाँव आपकी समिति से जुड़ा हुआ है और हम चाहे दूसरे समिति से अगर कोई लाभ लेना चाहे तो क्या मिल सकता है?
0: वैसे तो नहीं मिलेगा सर, वो अलग है कि हम नगर खाद ले आए, वो अलग चीज है, लेकिन जो केसीसी बनेगा वो क्षेत्रीय ही गाँव से।
1: अच्छा, खाद के लिए आपने कहा, तो खाद के लिए क्या सदस्य होगा उसे ही देंगे, और जो सदस्य नहीं होगा उसे खाद नहीं मिलेगी?
0: फिर उनको नगद मिलेगा,
1: नगद मिलेगी, उधार नहीं मिलेगी?
0: उधार।
1: और वैसे अगर आप समिति के सदस्य तो उधार
0: रखते हैं, उनका केसीसी है, तो उनको उधार लिमिट है,
1: तो उस पर भी ब्याज लगता है क्या? खाद ले से ले रहे हो, उसका भी ब्याज देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 बोरी 1500 की है, तो फसल के बाद 1 बोरी पे 15 रुपए तो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 1500 पे 15 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने।
0: बहुत सस्ती ब्याज दर है,
1: मतलब किसानों की एक तरह से मदद के लिए है,
0: मदद के लिए,
1: उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जाए। अच्छा, कीटनाशक भी मिलते हैं क्या आपके यहाँ से?
0: कीटनाशक हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं।
1: नहीं नहीं, जैसे खाद का वितरण आपके यहाँ से होता है, वैसे कीटनाशकों का भी होता है? कीटनाशकों का नहीं होता है। अच्छा, जो और भी जैसे पोटास है, जिंक है, सल्फर है, ये आपके यहाँ से मिलते हैं?
0: जैविक खाद है, किसान की स्वेच्छा पर निर्भर है कि वो चाहे
1: सकते हैं, वो स्वेच्छा से अगर आपसे मांग रहे हैं। अच्छा सर, खाद की बड़ी किल्लत है, किसान भाई लाइन लगानी पड़ी पिछले वर्ष, इस वर्ष की क्या स्थिति रहेगी?
0: इस वर्ष तो हमें लगता है कि भीड़ कम होगी, चाहे उनका वो बन रहा है
1: फार्मर रजिस्ट्री,
0: तो किसान आएगा। और दूसरी देखो, सरकार और भी उपाय सोच रही है, तो घर पे ही बुक कर सकते हैं बैठ के मोबाइल से, स्मार्टफोन। अभी चल रही है रामपुर में, सीतापुर में, इन जिलों में चल रही है, तो सक्सेस हुई तो अपने यहाँ भी चल सकते।
1: क्या है उससे, मतलब आप घर बैठे अपनी खाद की बुकिंग कर लीजिए?
0: हाँ, बुकिंग करते हैं।
1: बुकिंग करने के बाद फिर
0: आप दुकान बुक करेंगे,
1: पसंदीदा दुकान, वहाँ जाके आप वहाँ से ले सकते हैं,
0: जहाँ आपको नजदीक लगे।
1: मतलब किसी भी दुकान, मतलब समिति से की दुकान से?
0: दुकान से भी बुक कर सकते हैं, समिति से भी कर सकते हैं।
1: अच्छा, दुकानों पे भी खाद आ जाएगी?
0: जी।
1: अब मतलब वो लाइन वाला सिस्टम वो खत्म कर दिया। 1 हेक्टेयर पे कितना है सर?
0: 1 हेक्टेयर पे 5 बोरी डीएपी,
1: एक फसल के लिए,
0: एक फसल के लिए,
1: और 7 बोरी यूरिया। आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, उसके लिए आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो साथियों, अभी रामवीर जी ने जो बातें बताई हैं उनसे हमारी बहुत हद तक जो चिंताएं थी उनका समाधान हो गया होगा। और जब चिंताएं खत्म हो गई हैं तो आइए अब आपका एक मनोरंजन करवाते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा लोकगीत।

0: साथियों, हमारे यहाँ मानसून के आने में अब कुछ ही समय बचा है। हालांकि दो चार दिनों में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकती है, पर यहाँ पर हम एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि हर साल मानसून आता है, पानी बरसता है और यूं ही नदी नालों से होते हुए समुद्र में मिल जाता है। वाटर का जो लेवल है वो दिन पर दिन लगातार घटता चला जा रहा है, जिसका हम आपने अनुभव भी किया होगा। तो इस ओर अब कुछ हमें ठोस कदम उठाने होंगे। वैसे आज के हमारे कार्यक्रम में जल संचयन को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं अमर सिंह गुज्जर।
1: परमपिता परमेश्वर द्वारा सृष्टि के सृजन के साथ साथ ही इस जगत में जल और जीव दोनों के अटूट रिश्ते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों आदि

में इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के नाना तरह से वर्णन मिलते हैं और जल के बिना जीव मात्र एक कोरी कल्पना है, अर्थात जल ही जीवन है। और हमारे पूर्वजों एवं महान कवियों ने लिखा भी है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जब हम इतिहास के झरोखों से झांक कर देखें तो पाते हैं कि संसार में जितनी भी सभ्यताएं पनपी थीं, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही उनके अवुद्य स्थल रहे हैं। नील नदी, दजला फरात, सिंध एवं गंगा नदी की सभ्यताएं इसके उदाहरण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इससे ही हमारा संसारी जीवन पुष्पित एवं पल्लवित होता है और इसका अभाव ही सर्वनाश का सूचक है। इन्हीं तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राजा महाराजाओं ने पानी की महती आवश्यकता को समझकर जल संरक्षण के लिए समुचित कदम उठाए तथा बांधों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि के द्वारा अपनी रियासतकालीन जनता की जलापूर्ति के लिए विशेष प्रबंध किए। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ प्रकृति ने भी करवट लेना शुरू कर दिया। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी भयावह स्थिति पैदा होती जा रही है। जमीन का जल स्तर दिनों दिन नीचे खिसकता जा रहा है। यह बड़ा ही शोचनीय बिंदु है। जिस देश की 80% जनता का भाग मानसून पर निर्भर करता हो, उसके लिए वर्षा की अनिश्चितता एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर देती है। आज हमारे देश में कई जगह अकाल की विभीषिका देखने को मिलती है। यदि समय रहते हम लोगों ने समस्याओं के समाधान करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए तो हमारी मानवता को इसके बहुत गंभीर परिणाम भोगने होंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1950 में प्रति व्यक्ति पानी की औसत उपलब्धता 5000 क्यूबिक मीटर थी, जो इस समय 1879 क्यूबिक मीटर है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस समय आजादी के समय उपलब्ध पानी का 40% से भी कम पानी उपलब्ध है। अगर जल संरक्षण की यही हालत रही और जनसंख्या वृद्धि की दर यही रही तो वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक मीटर से कुछ ज्यादा ही पानी उपलब्ध होगा, जो एक खतरनाक स्थिति है। जल संसाधन मंत्रालय का भी मानना है कि देश के 8 नदी बेसिन क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति बन चुकी है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिकों के एक दल ने अपनी पर्यावरण संबंधी द ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक नामक एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आधी से अधिक आबादी पानी की कमी से प्रभावित होगी तथा एशियाई व प्रशांत क्षेत्र के देशों में 63% लोग पेयजल की भारी कमी का सामना करेंगे। यह डरावना परिदृश्य हमारी ही पृथ्वी पर 30 साल बाद होगा। हमारे देश में भी आबादी बढ़ने के साथ साथ पानी की ज्यादा जरूरत महसूस की जाने लगी। ट्यूबवेल खोदे जाने लगे, इसका दोहन इतना ज्यादा होने लगा कि कुएं तथा बावड़ियां सूखते चले गए। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार नलकूपों के अधाधुंध खनन से भी जल संकट बढ़ा है। इस खनन के चलते ही गुजरात के मेहसाणा और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिलों में तो भूजल एकदम खत्म हो गया है। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी जल स्तर तेजी से गिरा है, यह भी एक चेतावनी है। और इन सब में ज्यादा प्रभाव हमारे देश के मरु प्रदेश अथवा राजस्थान में देखने को मिलता है। इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण हमारे पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा पूर्ण दृष्टि से देखना है। राजस्थान में सतही जल का 52% उपयोग हो रहा है। भूजल के लगातार दोहन के कारण 1994 में 12 क्षेत्र डार्क जोन में थे, जो बढ़कर 86 हो गए हैं। प्रदेश में अनेक सतही जल स्रोत सूखकर खेल के मैदान बन गए हैं। भूजल वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले 5-10 वर्षों में जयपुर एवं प्रदेश भर में सन 2025 के बाद भूजल भंडार खत्म हो जाएंगे। राज्य के 32 जिलों में से 26 जिलों में भूजल नीचे जा चुका है। हमारे देश में 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर उपलब्ध पानी है, इसमें हमें 53 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी खेतों एवं पीने के लिए मिलता है, बाकी भाप बनकर उड़ जाता है या नदियों के द्वारा वापस समुद्र में चला जाता है। हमारी 60% भूमि वर्षा के जल पर सिंचाई के लिए निर्भर है। इस वर्षा का आधा भाग व्यर्थ चला जाता है, अतः वर्षा जल का संचयन अब हमारी एक महती आवश्यकता है। इसके लिए हमें हमारी नदियों का जो जल समुद्र में जाता है उसे काम में लेना होगा। उदाहरण स्वरूप पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की नदियों को जोड़कर उनका पानी राज्य को सुलभ कराया जाए तो मरुधरा पर मंगल हो सकते हैं। इन नदियों का पानी इस समय जो बाढ़ जैसी तबाही पैदा कर रहा है वह नहीं कर पाएगा। हमारी जो नदियां पाकिस्तान को निकलती हैं उन पर बाढ़

0: बनाए जाएं जिससे एक एक बूंद पानी का उपयोग हो सके। साथ ही हमारी आर्थिक समृद्धि भी होगी। वर्षा के पानी को रोकने के लिए कैचमेंट एरिया में पानी रोककर तालाब बनाए जा सकते हैं। भूमिगत बंधारा, स्टॉप डैम, बोरी बंधारा, खेत तालाब जैसी परिस्थितिजन्य विकल्पों के जरिए पानी रोका जा सकता है। बाढ़ के पानी को भी विशाल झीलों, तालाबों, नालों और नदियों में संग्रहित करने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। हमें पुराने कुओं, बावड़ियों, तालाबों की ओर भी ध्यान देना होगा तथा इसकी सफाई एवं पुनर्निर्माण करने होंगे, जिससे कि पुराने एवं पारंपरिक जल संग्रहण के तरीकों को ईजाद किया जा सके। हमें खेतों में मेड़बंदी करके बरसात के जल को रोकना होगा तथा सुविधानुसार एनीकट बनाए जा सकते हैं। वर्षा काल में 700 मिलीमीटर औसत वर्षा भी हो और उसका 70% पानी भी घर की 1000 वर्ग फीट छत से इकट्ठा किया जाए तो करीब 50,000 लीटर पानी कुएं में डालकर पुनर्भरण किया जा सकता है। हर वर्ष यदि 7300 हेक्टेयर क्षेत्र भी वर्षा जल का संग्रहण किया जाए तो देश की पूरी आबादी को 40 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रतिदिन 30 लीटर पानी पालतू जानवरों के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। अंततः हमें देश एवं प्रदेश के प्रत्येक गांव में जाकर यही नारा देना चाहिए, खेत के जल को खेत में रोको, गांव के जल को गांव में रोको और बूंद बूंद बचाओ, जल ही जीवन है, जिससे जनमानस में वर्षा के जल संचयन की प्रवृत्ति आए और हमारी भविष्य में आने वाली विकराल समस्या को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।
1: अभी अमर सिंह गुर्जर जानकारी दे रहे थे वर्षा जल संचयन के विषय में। तो उम्मीद है इस जानकारी में जो भी बातें बताई गई हैं हम आप उन पर जरूर अमल करेंगे। साथियों, अब आपको हम मौसम का हाल भी सुना देते हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है और इसलिए तापमान में भी आपने देखा होगा कि गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर अपने शहर आगरा के तापमान की बात की जाए तो इस समय अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, मतलब आज का 41 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस बना रहा। तापमान भले ही धीरे धीरे नीचे आ रहा हो लेकिन आप जो भी जरूरी एहतियाती उपाय हैं उन्हें जरूर अपनाएं।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

हमारे ग्रामीण भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम में लोक। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। हमारे मजदूर साथी अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रमिक भाई और बहनों को आपकी रेडियो साथी छवि गर्ग का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। श्रोताओं, आप सब कैसे हैं? देखिए ना, इस भयंकर गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हम बस यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, क्योंकि अगर आप सेहतमंद रहेंगे तभी ना अपना काम अच्छी तरह पूरे मन से कर पाएंगे। अरे भाई, हमारे श्रमिक भाई और बहनों की मेहनत के बूते ही तो ये कल कारखाने, ये उद्योग धंधे अच्छे से फल फूल रहे हैं। सही कहा ना मैंने? दोस्तों, यही है हमारा आज का विषय। हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है और लाखों लोगों के सपनों को उड़ान देता है, और वो है एमएसएमई दिवस, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस, जो हर वर्ष 27 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों के महत्व को समझना और उनके योगदान को सम्मान देना है। साथियों, आसान शब्दों में कहा जाए तो एमएसएमई ऐसे छोटे बड़े व्यवसाय जिन्हें शुरू करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, छोटी फैक्ट्रियां और घरेलू उद्योग। श्रोताओं, भारत में एमएसएमई क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। खास बात यह है कि गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये रोजगार और आय का बड़ा साधन है।

0: इतना ही नहीं मित्रों, एमएसएमई केवल रोजगार देता ही नहीं देता, बल्कि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी करता है। आज कई युवा नौकरी ढूंढने के बजाय अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाएं भी घर से छोटे उद्योग चलाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। और हाँ दोस्तों, एमएसएमई एक और बड़ा लाभ है, वो है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। स्थानीय कच्चा माल, कला और स्थानीय मेहनत से बने उत्पाद देश ही नहीं विदेशों तक पहुंच रहे हैं। इससे भारत की पहचान और मजबूत हो रही है, जैसे कि आगरे का पेठा उद्योग, जूता उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग और बनारस का हथकरघा उद्योग। इसी तरह हर जिले का अपना स्थानीय उत्पाद है। साथियों, आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तब एमएसएमई की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्थानीय उत्पाद खरीदकर हम छोटे उद्योगों को और मजबूत बना सकते हैं, साथ ही अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे सकते हैं। लेकिन मित्रों, इस क्षेत्र के सामने चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आधुनिक तकनीक की जानकारी का न होना, पूंजी की कमी, बाजार तक पहुंच और बड़े बड़े ब्रांडों से मुकाबला। ऐसे में सरकार की योजनाएं, बैंकिंग सहायता, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। अगर सही मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो छोटे उद्योग बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, जब भी उद्योगों का जिक्र होता है तो अक्सर मशीनों, उत्पादन और व्यापार की चर्चा होती है, लेकिन किसी भी उद्योग की असली ताकत होते हैं श्रमिक। श्रमिकों की मेहनत, लगन और कौशल ही किसी छोटे उद्योग को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओ, भारत में लाखों श्रमिक एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हैं। कोई कपड़ा बुनता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई मशीन चलाता है तो कोई हस्तशिल्प तैयार करता है। इन श्रमिकों के हाथों की मेहनत और छोटे उद्योगों को पहचान दिलाती है। ये श्रमिकों के लिए केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार भी है। इससे उन्हें जो आय मिलती है वो उनकी घर गृहस्थी चलाने के काम आती है, साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई भी इसी से पूरी होती है। लेकिन दोस्तों, श्रमिकों के सामने कई समस्याएं भी हैं। कई बार कम मजदूरी, कार्यस्थल पर असुरक्षा की भावना और काम के लंबे घंटे जैसी कई समस्याएं आती हैं। हमारी आज की वार्ता श्रमिक और उनकी गृहस्थी भी इसी विषय पर जानकारी दे रही है। वार्ताकार है इंदु बाला, आइए सुनते हैं।
1: शारीरिक श्रम करने वाले को श्रमिक कहा जाता है और हम सभी श्रमिक हैं। हर व्यक्ति का श्रम अलग अलग होता है और श्रमिक वर्ग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञानों और साधारण बातचीत में वैसे लोगों के लिए होता है जिनका देश की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में विशेष योगदान रहता है, या यूं कहें कि देश की आर्थिक उन्नति श्रमिक वर्ग के कंधों पर टिकी होती है। आज अंधे आधुनिकीकरण के दौर में भी इस वर्ग का महत्व कम नहीं हुआ। उद्योग धंधों, व्यापार जगत, कृषि उत्पादन और निर्माण के कार्यों में मजदूर श्रम की भूमिका निस्संदेह सबसे अधिक रहती है। लेकिन कुछ सालों में श्रमिक वर्ग कई प्रकार की दुश्वारियां झेलने को मजबूर है। मजदूरों ने बीमारी के साथ साथ भुखमरी की दोहरी मार झेली है। मुश्किल आर्थिक सामाजिक अव्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज़्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज़्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच के असंतुलन ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये बेहतर जीवन जी सके, बल्कि कई बार तो ये जीवन स्तर के मामूली गुजर बसर के लायक भी नहीं होता। इसके अलावा अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है और मजबूरीवश मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये अपना श्रम बेचने को मजबूर हो जाते हैं। स्थायी रोजगार ना होने

के कारण इनमें चिंता, मानसिक तनाव का खतरा अधिक होता है। गुजर बसर लायक आमदनी न होने पर इनका परिवार भी इसी काम से जुड़ा होता है। जहां बच्चों के खेलने व पढ़ने की उम्र होती है, वहीं हालातों से मजबूर बच्चे मजदूरी करने को मजबूर एवं लाचार होते हैं। जहां इनका शोषण आसानी से किया जाता है और बाल श्रमिक किसी माचिस के कारखानों, कांच उद्योग में काम करने और कबाड़ा बीनने वाले, पटाखे बनाने वाले कारखानों में बहुत संख्या में काम करते हैं, जहां इनके स्वास्थ्य और जान का जोखिम हर समय बना रहता है। और शिक्षा के अभाव में यही बच्चे बड़े होकर प्राय इन्हीं की तरह अनपढ़, अशिक्षित और मजदूर बनकर निरंतर शोषित, पीड़ित जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। और कई बार तो धन के अभाव और समाज में इनको सम्मान न मिलने के कारण अपराध की दुनिया में भी चले जाते हैं, जो कि समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं होते। अक्सर काम की तलाश में श्रमिक वर्ग अपना घर, अपनों को छोड़कर बेगाने दुनिया की तरफ निकल पड़ता है, ताकि जीवन की मूल आवश्यकताओं जैसे कि दो वक्त की रोटी, कपड़ा जुटा सके। और अक्सर परिवार से दूरी और अकेलापन इन्हें ऐसे अंधकार में धकेल देता है जहां से निकल पाना असंभव हो जाता है, जैसे नशाखोरी, शराब पीना आदि। और कई बार तो अपनी इसी नशाखोरी के लिए रुपए पैसे न होने के कारण गलत रास्ते, जैसे कि चोरी, डकैती आदि मार्ग को अपना लेते हैं, जिससे कि इनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और यदि परिवार के साथ हो तो धन के अभाव में पारिवारिक कलेश, झगड़े होते रहते हैं। और ऐसे में यदि कोई बीमारी घर आ जाए तो हालात और पस्त हो जाते हैं, जिसके लिए कर्जा लेना पड़ता है, जो कि इनके जीवन की दुश्वारियों को और बढ़ा देता है। ये तो वही बात हो गई सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। श्रमिक का पूरा जीवन, या यूं कहें कि हर पल की टेंशन, अपने भूखे बच्चों के पेट भरने की टेंशन, एक समय की रोटी मिल जाए तो दूसरे समय की रोटी के इंतजाम की टेंशन, और अगर रोटी मिल जाए तो बच्चों के भविष्य की टेंशन, श्रमिक का हर पल समस्याओं से जूझते हुए निकलता है। इसी कारण पूरा का पूरा परिवार मेहनत मजदूरी में लगा रहता है। उसके बाद भी बहुत मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। वहीं महिला श्रमिकों का जीवन भी बहुत ही कष्टदायक होता है, जहां अन्याय के साथ साथ शारीरिक और मानसिक शोषण आम बात है। अक्सर महिलाओं को कार्यस्थल पर शौचालय की कमी से दो चार होना पड़ता है और असुरक्षा का हर समय भय बना रहता है। महिला मजदूरों की और भी बड़ी समस्या, जैसे गर्भधारण और प्रसव के समय तक काम करते रहना, और प्रसव के बाद भी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम करते रहना, जिससे इनका अच्छी प्रकार से खान पान एवं आराम ना मिलने के कारण इनका शरीर बहुत से रोगों से घिर जाता है। महिला श्रमिक अपने कार्य के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह करती है, जिससे उन्हें संघर्ष और तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका बहुत बड़ा कारण इनका अशिक्षित होना भी है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि मजदूरों के श्रम का सम्मान होना चाहिए, उनकी जीवन दशा में सुधार हो सके उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। यदि ये मजदूर ना होते तो क्या हमारा समाज जिस विकास की बात करता है, क्या वह कर पाता? क्योंकि मजदूर चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, आर्थिक क्रियाकलापों में उसकी अग्रणी भूमिका होती है। एक मजदूर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का हुनर रखता है, लेकिन क्या उसके हुनर को नज़रअंदाज करना सही है? श्रमिक के बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके श्रम के बिना यह दुनिया बंजर दिखती है। उसी के श्रम से आज रेगिस्तान में फूल खिल रहे हैं, पहाड़ों पर पुल

0: रहे हैं और समुद्र के गहराइयों से मोती सीपी निकाले जा रहे हैं। अंत में मैं मजदूर हूँ आज मजबूर हूँ, मैं मजदूर हूँ आज मजबूर हूँ, अपने घर से कोसों दूर हूँ, पर ये क्यों भूल गए हैं सब, पर ये क्यों भूल गए हैं सब कि मैं भी अपने परिवार का नूर हूँ, कि मैं भी अपने परिवार का नूर हूँ। जिनके लिए हमने काम किया, जिनके लिए हमने काम किया, ना कभी खुद को आराम दिया, आज वो बस खुद की सोचते हैं और हमें गरीबी का इनाम दिया, और हमें गरीबी का इनाम दिया।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता श्रमिक और उनकी गृहस्थी। वार्ताकार थी इंदु बाला। और अब समय है आज के प्रश्न का। सिख समाज के महान संस्थापक शेर ए पंजाब कौन थे? आप प्रश्न का उत्तर खोजिए, तब तक हम सुन लेते हैं ये गीत।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

दोस्तों, हमने आपसे प्रश्न किया था कि शेर-ए-पंजाब की उपाधि किसे मिली। उत्तर है, सिख साम्राज्य के संस्थापक और महान शासक महाराजा रणजीत सिंह। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था। दोस्तों, इन्होंने पंजाब के अलग-अलग सिख मिसलों को एकजुट करके एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। श्रोताओं, बचपन में चेचक होने के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, फिर भी वो महान योद्धा बने और बहुत कम उम्र में ही, लगभग 16 वर्ष की आयु में, उन्होंने सेना का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें शेर-ए-पंजाब की उपाधि मिली। साथियों, सबसे जरूरी बात कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा एक समय उनके खजाने का हिस्सा था। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख और यूरोपीय अधिकारी खास पदों पर थे। इतने विशाल साम्राज्य के राजा होने के बावजूद उनका रहन-सहन बहुत सरल था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि और राजाओं की तरह उन्होंने ताज पहनना कभी पसंद नहीं किया। दोस्तों, जिस अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को देखने पूरी दुनिया आती है, उस पर सोने की परत महाराजा रणजीत सिंह ने ही चढ़वाई थी। उनके जीवित रहते ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर कब्जा नहीं कर सकी। ऐसे धार्मिक, न्यायप्रिय, प्रजाहितेशी राजा का निधन 27 जून यानी आज के ही दिन सन 1839 को लाहौर में हुआ था। श्रोताओं, महाराजा रणजीत सिंह का शासन पंजाब के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। ज्ञान सागर में आज के लिए बस इतना ही। आइए अब चलते हैं सेहत टिप्स की ओर। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपसे सेहत टिप्स में किसी भी खाने पीने या औषधि की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आज आपके लिए लाए हैं योग की दो ऐसी श्वास तकनीक जो शरीर और मन को प्राकृतिक रूप से ठंडा और शांत करती है, और ये है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। ये दोनों ही भीषण गर्मी, तनाव और पित्त दोष को शांत करने में बेहद फायदेमंद है। तो सबसे पहले जानते हैं शीतली प्राणायाम के बारे में। आपको किसी भी आरामदायक मुद्रा जैसे कि सुखासन या पद्मासन में सीधी पीठ करके बैठना है। अब अपनी जीभ को मुंह से बाहर निकालें और दोनों किनारों को मोड़कर

एक नली जैसा आकार बना लें, फिर जीभ के द्वारा गहरी सांस अंदर लें। आपको गले और फेफड़ों में बर्फ जैसी ठंडक महसूस होगी। पूरी सांस भरने के बाद मुंह बंद कर लें और धीरे धीरे नाक से सांस बाहर छोड़ दें। इसे करने से साथियों शरीर का तापमान कम होकर गर्मी से तुरंत राहत मिलती है। आप इसे 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। श्रोताओं, दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, फिर अपने ऊपरी और निचले दांतों को आपस में सटाएं और होठों को थोड़ा खोल दें ताकि दांत दिखाई दें। फिर दांतों के बीच की जगह से सांस अंदर लें। हवा दांतों से गुजरते हुए एक सिसकारी की आवाज के साथ अंदर जाएगी। मुंह बंद करें और धीरे धीरे नाक से सांस बाहर छोड़ें। ये प्राणायाम विशेष रूप से दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के साथ शरीर को अंदर से शीतलता देता है। इसे भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद बने रहें और खुश रहें, इसी कामना के साथ आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं ये गीत।

हमारे मजदूर भाई बहन अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया हिंदी में समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार

पार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी

0: बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जी बिल्कुल, मुझे चूंकि जो हम पारंपरिक खेती पहले करते थे उनकी अपेक्षा में
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria for a three-day visit to Seychelles. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Appreciating the gesture, Prime Minister Modi reiterated that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister Modi also thanked the Indian diaspora for the warm welcome at the airport. He said the manner in which the Indian diaspora has preserved and celebrated culture from different parts of India is appreciable.

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। विविधा के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंटवार्ता, भारतीय उद्योग उन्नयन में एमएसएमई का योगदान, और इस विषय पर आप सुनेंगे वार्ताकार महेश कुमार शर्मा से अनिंद्र सिंह की बातचीत।
1: आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट में सेवाएं दे चुके सेवानिवृत्त निदेशक महेश कुमार शर्मा जी। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: धन्यवाद सर।
1: सर, सबसे पहले तो एमएसएमई को ही जानना चाहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का क्या महत्व है।
2: सर्वप्रथम तो एमएसएमई दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत की जीडीपी, भारत में रोजगार सृजन, भारत का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात, और इसके साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन और जो आय वितरण सभी क्षेत्रों के हिसाब से, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है एमएसएमई का। यदि हम वर्तमान में बात करें, जो हमारा जीडीपी है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है हमारा एमएसएमई का, वो करीब 30% है। टोटल जितना जीडीपी है इंडिया का, उसमें
1: 30% एमएसएमई का
2: कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ यदि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जितना हमारे यहाँ टोटल निर्माण होता है उसके अंदर 35% जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई यूनिटों द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब 35% का उसमें भागीदारी है हमारी एमएसएमई इकाइयों की। इससे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उसके अंदर योगदान है। जैसे हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, उसके अंदर करीब 45% का हमारा एमएसएमई जो इकाइयां हैं वो योगदान देती हैं।
1: 45%
2: का। और इसके अंदर हमारे यहाँ से चर्म उत्पाद है, दवाइयां हैं, टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, इसके अंदर काफी काम होता है एमएसएमई में, जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एक है हमारा कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। आप जानते हैं कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जहाँ पे है वो एमएसएमई इकाइयों द्वारा दिया जाता है। हमारे देश में करीब जो रजिस्टर्ड इकाइयां हैं वो 6.5 करोड़ हैं, और उसके अंदर 30 करोड़ लोग काम करते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी,
1: कितना बड़ा रोजगार जो है एमएसएमई क्रिएट कर रहा है।
2: ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जो हमारी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, रेलवे है, डिफेंस है, डिफेंस के अंदर बहुत सारी यूनिटें बहुत काम कर रही हैं।
1: आजकल तो रक्षा क्षेत्र बहुत उभर के भी आ रहा है, तो बहुत सारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी सप्लाईज हैं, तो वो सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए जो आप बोल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो आप जगह जगह आप देखते हैं।
2: जहाँ भी इस तरह का कोई प्रोडक्शन यूनिट होती है डिफेंस की, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या वो सार्वजनिक क्षेत्र की हो, तो उसके आसपास या उनके लिए सप्लाई के लिए एंसिलरी यूनिट जो होती है उसकी सहायक इकाइयां अपने आप डेवलप होती है, जिसमें एंसिलरी यूनिट्स होती है जिनको कहते हैं आपूर्ति श्रृंखला को सप्लाई करने वाली यूनिट, जिसमें वो इंटरमीडिएट सामान जो बनता है वो सप्लाई करती है यूनिटों को। उस तरह की बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स हैं। ऐसे ही रेलवे के अंदर है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे इक्विपमेंट इस तरीके के होते हैं जो एमएसएमई

0: ही सप्लाई करती है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट की एक स्कीम है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कहते हैं, एमएसएमई की है, जिसके अंदर जितना टोटल परचेज होती है किसी मिनिस्ट्री की, चाहे इंक्लूडिंग डिफेंस, जहां बहुत ही कोई सोफिस्टिकेटेड या ऐसी उच्च तकनीकी योग्यता की जरूरत ना हो, जिसमें उसमें करीब जो 25% कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई क्षेत्र का होता है।
1: सरकार ये प्रयास करती है कि एमएसएमई इकाइयों द्वारा प्रोड्यूस की जा रही चीजों को ज्यादा परचेज किया जाए,
0: ज्यादा परचेज कम से कम 25% तक तो किया ही जाए जो टोटल वो लोग परचेज करते हैं। उसके अंदर एक सब कोटा और रखा हुआ है SC ST एंटरप्राइजेस के लिए 4%, और जो महिलाओं की यूनिट्स हैं जिनमें उनका 51% शेयर्स है उसमें 3% उनके लिए रखा।
1: कुल मिला के मतलब सभी क्षेत्रों का एक संस्थागत तरीके से विकास के लिए इसलिए ऐसी पहल की गई है।
0: इसके अलावा जो क्षेत्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा एक भागीदारी है। आप देखते हैं कि एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विशिष्ट तरीके का कला होती है।
1: आजकल एक स्कीम भी चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस स्कीम के तहत भी जिलों
0: हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया उसके अंदर।
1: तो ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों के विकास में अगर हम देखें तो एमएसएमई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा कर रहा है। एक गवर्नमेंट का इस जो अभी बीते कुछ सालों से इनिशिएटिव रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहले हैं, इसमें भी अगर हम देखें तो एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
0: आत्मनिर्भर भारत की जो नींव है वो एमएसएमई द्वारा मजबूत की जा रही है। हम कहें कि यदि एमएसएमई यदि यहाँ की अर्थव्यवस्था या उद्योग की रीढ़ है, जो बैकबोन है, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसी तरीके के जो लोकल लेवल पे मेक इन इंडिया है या ODOP स्कीम्स के अंतर्गत है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर है, वो लोकल जो प्रोडक्ट है उनको उस लेवल तक लाना है, थोड़ा उनकी क्वालिटी अपग्रेड करें, क्वालिटी अपग्रेड करके उनको नेशनल स्तर पे या इंटरनेशनल स्तर की क्वालिटी के साथ उनको मार्केट मुहैया कराया जाए। जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है उसे एक पहचान मिले डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, वो इसके स्कीम की जो मेक इन इंडिया के अंतर्गत और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर ये है, उनको एक स्पेसिफिक पैकेजिंग सिखाई जाए एक्सपोर्ट के हिसाब से, उनकी ब्रांडिंग की जाए, उनकी क्वालिटी अपग्रेडेशन की जाए। इसके लिए जैसे जेड स्कीम है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम है, उनकी क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए लीन टेक्नोलॉजी है,
1: उस तो दुनिया के बाजार में वो अपने आप को स्थापित कर सके, कम्पीट कर पाए।
0: और इसके साथ साथ हमारी जो लोकल डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें अपनी एक पहचान बन सके। हमारे आसपास देखते हैं जैसे आगरा में चर्म उद्योग है, मथुरा के अंदर मुकुट और पोशाक वाले हैं, तो इस तरह के में काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। जैसे मथुरा के अंदर जो कंठी माला का है या मुकुट पोशाक का है,
1: अब घरेलू महिलाएं काम करती है जहां पे इस तरह की संभावनाएं ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि युवा उद्यमियों के लिए एमएसएमई क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं हैं?
0: असीम संभावनाएं युवा लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारा उद्योगीकरण बढ़ रहा है इस देश में, उस तरीके से उन लोगों को जो प्रोडक्ट की जरूरत है, जैसे हमने अभी एंसिलरी की बात की, उसमें बहुत यूनिट्स आएंगी। डिफेंस में हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं काफी सारा है डिफेंस के अंदर। रेलवे के अंदर हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता है तो हमें एंसिलरी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके साथ साथ जो आजकल आ रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी वाली एमएसएमई यूनिट्स, जिसमें स्किल्ड की जरूरत होती है, जो हमारे काफी टेक्निकल क्वालिफाइड युवा हैं, उनके लिए बहुत अच्छा IT सॉफ्टवेयर है, वेब डिजाइनिंग के अंदर है। इसके साथ साथ लीगल सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं या नए क्षेत्र,
1: गवर्नमेंट का एक मिशन भी चल रहा है स्किल इंडिया मिशन, जिसके तहत भी स्किल एनहेंसिंग के लिए जो खासतौर पर यूथ है उनको प्रमोट किया जा रहा है,
0: उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उनको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उनके अंदर जिससे डेवलप हो, जैसे कोई ITI किया हुआ है तो जिस क्षेत्र में उसने ITI किया उसमें उसे एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए। जब प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिल जाएगी तो उसके बाद वो जाके उस क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं,
1: स्किल अपनी एनहेंस करके उसमें अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तो और कोई ऐसा संदेश हमारे युवा उद्यमियों के लिए या हमारे श्रोताओं को आप देना चाहें आज एमएसएमई डे पर?
0: देखिए, इस एमएसएमई डे पे मैं कहूंगा इसमें असीम संभावना है और इस असीम संभावना का फायदा उठाना चाहिए। और युवाओं के लिए मैं विशेषकर कहूंगा कि इस समय काफी सारी ऐसी स्कीम्स हैं। देखिए, आज जो रोजगार के लिए किसी हम औरों के पास जाते हैं उससे बढ़िया हम रोजगार देने वाले बने। जब हम रोजगार देने वाले बनते हैं तो हमारी समाज में हमारे देश की उन्नति हर जगह हम भागीदार बनते हैं। इसके साथ साथ मैं उन्हें कहूंगा कि जिस तरह की आजकल स्कीम्स हैं, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, कोलैटरल फ्री लोन है इस समय। इसके अलावा PMEGP स्कीम्स हैं और आपको अपने को टेक्निकल अपग्रेड करने के लिए भी स्कीम्स चल

0: रही है। मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान
1: फोकस
0: दे
1: कर
0: रही है,
1: रही है, हर
0: फोकस कर
1: स्टेप
0: रही
1: पे
0: है,
1: आपको सहायता दी जा
0: सहायता
1: रही
0: दी
1: है,
0: जाएगी,
1: आपको उसके मौके का बस लाभ
0: बस
1: लेना
0: लाभ
1: है।
0: लेना है और मार्केट तक पहचान बनानी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज भारतीय उद्योगों के विकास में एमएसएमई की भूमिका और उससे जुड़ी जो संभावनाएं हैं उन पे जो हमारे श्रोताओं को जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद सर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 96 में बने नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन

0: लेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
1: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटीज मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी मां होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े

0: भी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षाकाल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2,478 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित। कहा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 हुए हैं। श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम में स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो हमारे सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस मिट्टी की खुशबू में जीवन का सम्मान है, भारत माँ की पावन धरती हम सब की पहचान है। जिसने हमको जन्म दिया उसका ऋण अपार है, मेरी माटी मेरा देश सबसे सुंदर संसार है। जी हां श्रोताओं, मेरी माटी मेरा देश, सुनने में तो ये एक मामूली सी लाइन लगती है, लेकिन श्रोताओं ये केवल एक विषय नहीं बल्कि हम भारतीयों के हृदय की एक भावना है। यह मिट्टी केवल धूल नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के त्याग, हमारे वीर सैनिकों के बलिदान, हमारे किसानों की मेहनत, संतों के ज्ञान और करोड़ों देशवासियों के सपनों की अमूल्य धरोहर है। भारत की मिट्टी ने हमें जन्म दिया, हमें संस्कार दिए, हमारी पहचान बनाई। इसीलिए जब हम मेरी माटी मेरा देश कहते हैं तो उसमें प्रेम, सम्मान, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति चारों भाव समाहित होते हैं। श्रोताओं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां अनेक भाषाएं, धर्म, वेशभूषाएं और संस्कृतियां हैं, फिर भी हम सब एक हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में एकता है, और यही हमारी पहचान है, और यही हमारी पहचान हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। श्रोताओं, देश केवल सरकार से नहीं बनता बल्कि उसके नागरिकों से बनता है। जी हां, जब एक विद्यार्थी

मन लगाकर पढ़ाई करता है और एक किसान खेत में मेहनत करता है, एक सैनिक सीमा पर पहरा देता है और एक शिक्षक शिक्षा देता है और एक डॉक्टर लोगों की सेवा करता है, तभी ये राष्ट्र मजबूत बनता है। इसीलिए हम जहां भी हों, जिस भी क्षेत्र में हों, पूरी ईमानदारी से हमें अपना हर कार्य करना चाहिए। और श्रोताओं, कोई भी कार्य हो, कार्य कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। इसीलिए हमारा जो भी काम हो, हमें सच्ची राष्ट्र सेवा के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए और यही हमारी देशभक्ति कहलाती है। श्रोताओं, हमारे सैनिक हर मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। वे अपने परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनकी वजह से ही हम सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीते हैं। जब भी तिरंगा ऊंचा लहराता है, उसमें हमारे सैनिकों का साहस और बलिदान दिखाई देता है। वहीं बात की जाए हमारे किसान की, तो हमारे किसान तो श्रोताओं जैसे देश के अन्नदाता हैं। जब हम हमारी मेरी माटी कहते हैं, तो सबसे पहले किसान का चेहरा सामने आता है। किसान दिन रात मेहनत करके इसी मिट्टी से सोना उगाता है, और यदि किसान ना हो तो हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। इसीलिए हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए और भोजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जी हाँ श्रोताओं, मेरी माटी मेरा देश में ये हमारा सबसे बड़ा एक संदेश है कि भोजन का कभी भी अपमान ना करें। ये एक एक तिनका, एक एक जो कण है खाने का, ये बड़ी मेहनत के साथ हमारे किसान भाइयों ने खेत में उगाया है। और श्रोताओं, किसान भाई आज हमारे भारत की इस मिट्टी पर अपना हल चला पा रहे हैं, या यूं कहें आधुनिक युग में ट्रैक्टर चला रहे हैं, या नई नई विधियों के साथ हमें जो खाने के लिए हमारे लिए अन्न उगा रहे हैं, इसमें भी हमारे देश की माटी में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है। जी हाँ, जिस स्वतंत्र भारत में आज हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए लाखों वीरों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है। बात की जाए तो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और हमें भी इस पर चलने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरे हाथ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और असंख्य वीरों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान किया, और उनका त्याग हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। श्रोताओं, यदि बात की जाए हमारी संस्कृति और परंपरा की, तो योग, आयुर्वेद, ध्यान और भारतीय दर्शन ने पूरे विश्व को स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग सिखाया है। भारत को विश्व में संस्कृति और आध्यात्मिकता की भूमि कहा जाता है, जहां वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई है। हमारे त्यौहार, अगर हमारे त्योहारों की बात की जाए, तो दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, वैसाखी, पोंगल, ओणम और कल ही जैसा कि हम सभी ने मुहर्रम मनाया, सभी ये त्यौहार प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। श्रोताओं, इस माटी मेरी माटी मेरा देश के जो हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ये मेरे देश की माटी है और ये मेरा देश है, तो इस देश के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। और हमारे कर्तव्य हैं कि हम ईमानदारी से अपने कार्य को करें, पर्यावरण की रक्षा करें, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, सभी धर्मों का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें और संविधान का सम्मान करें। और यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य निभाएगा, तो भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा। आज भारत विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, शिक्षा, चिकित्सा और खेल के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर और अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करना चाहिए। और इसके साथ ही यदि श्रोताओं बात की जाए हमारी एक और बड़ी जिम्मेदारी की, तो स्वच्छ भारत

और स्वस्थ भारत, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि हम कहीं भी चलते फिरते इधर उधर कचरा फेंक देते हैं और बिल्कुल इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि इस तरह से हम अपने इस माटी में, अपने देश में हम किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं। स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है श्रोताओं। आज अगर भारत की स्थिति देखें तो जिसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं कि जैसे कि अभी देखा जाए कि बारिश का समय है, हालांकि अभी इस समय बारिश नहीं है, लेकिन जब बारिश आती है तो हमारे जो आसपास के जो नाली हैं, नाले हैं, वो नदियों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके लिए हम जिम्मेदार अपनी सरकार को ठहराते हैं। लेकिन श्रोताओं, यदि देखा जाए उन नालों की जब सफाई होती है तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से निकलता है टनों प्लास्टिक। और वो प्लास्टिक कहां से आता है? आखिर हम ही तो फेंकते हैं। कितने ही हमारे देश के नागरिकों को देखा जाता है कि यदि उनकी बगल से कहीं बड़ा नाला निकल रहा है तो वे अपने घर का या वे अपनी कोई ठेले पर दुकान चला रहे हैं या उनके आसपास दुकान है, अपने शॉप से निकले हुए, अपने ठेले से निकले हुए, अपने घर से निकले हुए कचरे को यहीं वहीं फेंक देते हैं या फिर उस पास वाले नाले में फेंक देते हैं कि अरे आगे से तो पानी आएगा, ये बहकर आगे चला जाएगा। और यदि नाले की बात इससे बढ़कर भी की जाए तो यही हाल तो हमारे देश की नदियों का है। कचरा लिया, फेंक दिया, आगे चला जाएगा, आगे पहुंचा, आगे और फेंक दिया, आगे चला जाएगा। और ऐसे ही कर कर तो हमने धीरे धीरे अपनी देश की नदियों को प्रदूषित कर दिया है। और बात करें यदि अपने आसपास के नालों की, तो जब मानसून आता है तो ये नाले भी उफान लेते हैं, वो पानी नालों में ना निकलकर हमारे सड़कों पर आ जाता है और हम उसके लिए जिम्मेदार अपनी सरकार को ठहराते हैं। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इधर उधर कचरा ना फेंकें, कचरा कचरेदान में डालें। और आजकल तो सरकार ने हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं कि कचरे वाली गाड़ी खुद चलकर गाना बजाती हुई हमें एक संदेश देती हुई हमारी गलियों में आती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कचरे को इधर उधर ना डालें, उस कूड़े की गाड़ी में डालें और अपने आसपास सफाई रखने की पूरी कोशिश करें। इसके साथ ही श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मिट्टी, जल, वायु और वन प्रकृति की अनमोल धरोहर है। यदि हम अपनी धरती को प्रदूषित करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं कर पाएंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बस मानसून हमारे निकट है, कुछ ही दिनों में बारिश जो है वो होने लगेगी और ये समय होता है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। जल बचाना तो सबसे बड़ी आज की जरूरत है ही, साथ ही प्लास्टिक का उपयोग हम कम करें और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। पर्यावरण संरक्षण में श्रोताओं, हमारी भागीदारी, ये हमारे सबसे बड़े, हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। अभी से अपनी कमर बांध लें कसकर कि जैसे ही मानसून की शुरुआत हो, अपने आसपास जहां भी आपको लगे कि ये जगह उचित है, यहां पर एक प्यारा सा नन्ना सा पौधा लगाया जा सकता है जो आगे चलकर हमें बहुत अच्छी छांव देगा और हमारी पीढ़ियां भी हमें याद करेंगी जब उस छांव को वो महसूस करेंगी। तो श्रोताओं, बस तैयार हो जाएं कि बस जैसे ही मानसून दस्तक दे हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। जी हाँ श्रोताओं, ये धरती, ये वन, ये नदियां, प्रकृति, ये किसी भी बंदिशों में रहने वाले नहीं है, ये तो बस बने हैं हमें अपना प्यार दुलार देने के लिए। और श्रोताओं, मैंने कहीं पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है लेकिन प्रकृति किसी एक का लालच पूरा नहीं कर सकती। सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर देती है लेकिन किसी एक का लालच पूरी नहीं कर सकती। हम चाहें कि वनों को काट दें, हम चाहें कि मिट्टी का कटाव करें, हम चाहें कि जल को रोक दें, उसका जो रास्ता है उसको बदल दें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति तो अपने चाल में, अपनी मस्ती में चलती है। वो तो बनी ही बस अपने तरीके से चलने के लिए है।

प्रकृति से हम हैं श्रोताओं, ना कि हमसे प्रकृति है। तो कोशिश करें कि ये नदियाँ, ये पवन, इनको हम दूषित ना करें, बल्कि इनका हम संरक्षण करें और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

जी हाँ श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और श्रोताओं, जब मेरी माटी के बारे में बात हो, मेरे देश के बारे में बात हो, तो देश के सपूतों के बारे में बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ श्रोताओं, आज है सेम मानिकशा की पुण्यतिथि। एक देश का ऐसा लाल जो देश के लिए समर्पित हो गया, उसने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। सीमा पर जिसने दीप जलाए, आंधियों से कभी ना हारा, भारत माँ के वीर सपूत ने हर संकट को साहस से संवारा। जिसकी वर्दी में था सम्मान, जिसकी आंखों में था विश्वास, ऐसी अमर सेनानी को शत शत नमन, शत शत प्रणाम। जी हाँ श्रोताओं, देश का एक ऐसा बेटा जिसका नाम सुनते ही साहस, अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की छवि हमारे मन में उभर आती है, और वह नाम है सैम मानेकशॉ। आज उनकी पुण्यतिथि है, और ये केवल उन्हें याद करने का दिन नहीं बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर भी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता केवल पद से नहीं बल्कि चरित्र, निर्णय क्षमता और देश के प्रति समर्पण से होती है। श्रोताओं, कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ में बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे। वे कठिन परिस्थितियों से डरते नहीं थे। वे हमेशा कहते थे कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने साथियों का विश्वास जीत सके। उनकी यही विशेषता आगे चलकर उन्हें भारत का सबसे लोकप्रिय सैन्य अधिकारी बनाती है। श्रोताओं, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ, तब युवा अधिकारी सैम मानेकशॉ ने वर्मा मोर्चे पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान उनके शरीर में कई गोलियां लगी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को लगा कि वे बच नहीं पाएंगे, लेकिन उनका साहस अटूट था। उन्होंने हार नहीं मानी। स्वस्थ होकर वे फिर सेना में लौटे और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। उनकी वीरता के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। यदि भारतीय इतिहास में सैम मानेकशॉ के योगदान की सबसे बड़ी बात की जाए, तो वह है 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। उस समय वे भारतीय सेना के प्रमुख थे। पूर्वी पाकिस्तान में लाखों लोग अत्याचार झेल रहे थे। बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे। देश में युद्ध की मांग उठ रही थी, लेकिन सैम मानेकशॉ ने जल्दबाजी में युद्ध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सरकार से कहा कि यदि युद्ध करना है तो पूरी सेना को पूरी तैयारी का समय दीजिए। यह निर्णय उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। उन्होंने मौसम, सैनिकों की तैयारी, हथियारों की उपलब्धता और रणनीति, हर पहलू का गहराई से अध्ययन किया। और जब पूरी तैयारी हो गई, तब भारतीय सेना ने युद्ध शुरू किया, और परिणाम यह हुआ कि केवल 13 दिनों में भारत ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, सैम मानेकशॉ का जीवन हमें अपने जीवन में देश के प्रति समर्पित रहने, अनुशासित रहने का एक संदेश देता है। आज उनकी इस पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। श्रोताओं, हर देश की माटी अपने बच्चों को वापस बुलाती है। हर माँ अपने बेटे को अपनी सीमा से वापस बुलाती है। हर बहन, हर पत्नी अपने पति के लिए यही कामना करती है कि उनकी दीर्घायु हो, वो देश के लिए समर्पित रहें लेकिन दीर्घायु रहें, और हमेशा इनके इंतज़ार में बैठी रहती हैं कि घर कब आओगे। तो आइए सुनते हैं इस देशभक्ति गीत को एक देशभक्ति जज्बे के साथ।

वीरों की गाथा अमर रहे, उनका ऊंचा नाम रहे, भारत माँ के हर प्रहरी का जंग में सदा सम्मान रहे। कर्तव्य पथ पर चलना सीखे, साहस को अपना श्रृंगार करे, सैम मानेकशॉ जैसे वीरों का जीवन भर हम सत्कार करें। और श्रोताओं, इन पंक्तियों के साथ ही अब दीजिए कार्यक्रम से इजाजत अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को। हम आशा करते हैं कि मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम से आप ये सीखेंगे कि हम अपने देश के प्रति किस भावना के साथ समर्पित रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोता, आप सुनेंगे फिल्मों से भजन पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या।

श्रोता इस भक्ति गीत को सुन रहे थे फिल्म लगान से लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। संगीत निर्देशन था ए आर रहमान का और उस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने। इस समय आप सुन रहे हैं भजन संध्या आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला भजन आप सुनेंगे, भजन रूपी गीत आप सुनेंगे फिल्म द बर्निंग ट्रेन से सुषमा श्रेष्ठा, पद्मिनी कोल्हापुरी एवं साथियों की आवाजों में। संगीत निर्देशन है आर डी वर्मन का और इस गीत को लिखा है साहिल ने। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इस भक्ति परक गीत को कार्यक्रम भजन संध्या में।

0: श्रोता समय सुन रहे हैं भजन संध्या आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म मेला से कविता कृष्णमूर्ति, जसविंदर और साथियों की आवाजों में। इस गीत में संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और श्रोताओं इस गीत को हमने लिया है फिल्म मेला से। तो आइए सुनते हैं इस भक्ति रूपी गीत को।
1: ओ पालन है

श्रोताओं, कार्यक्रम भजन संध्या का ये अगला भक्ति पर गीत आप सुनेंगे अमित त्रिवेदी की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से।

श्रोताओं, कार्यक्रम भजन संध्या का ये अगला सूफी भक्ति गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बजरंगी भाईजान से अदनान सामी की आवाज में। संगीत निर्देशन है प्रीतम का और इस गीत को लिखा है कौशल मुनीर ने। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ।

और श्रोताओं, इस सूफी भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सिलसिला से ये गीत, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। संगीत निर्देशन है शिव हरि का और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संकेत। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का और गीतकार हैं इंदिवर, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म काम चोर से।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला गीत श्रोता सुनेंगे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। संगीतकार हैं आरडी वर्मन और गीतकार हैं आनंद बख्शी, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म बेताब से।

और इस गाने के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे श्रोता सुनेंगे न्यूज़ एट 9।

और 9:15 पर श्रोता सुनेंगे उर्दू में समाचार। इन सभी बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में

0: हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।

0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे।

0: किश्ती जहाज, एम्बुलेंसेस, दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द-बुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जनाब मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर हैं, जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहां पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की यह तकरीब एक पेड़ मां के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशल्स के दरमियान मुश्तरका अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जॉइंट टॉर्टोइज एनक्लोजर भी गए। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान राब्ते मुस्तहकम हुए हैं। खैर सगाली के खसूसी कदम के तहत वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी, जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं। दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय बहरिया का अंदरूने मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सेशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सेशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सेशेल्स के दरमियान बढ़ती बहरी शराकतदारी और देरीना दोस्ती का इजहार होता है। इस दौरान INS इक्षक कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा और सेशेल्स की दिफाई अफवाज के साथ सिलसिलेवार पेशावराना राब्ते कायम करेगा, जिनका मकसद बहरी इश्तराक और एक दूसरे के तरीकेकार से वाकफियत में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DT न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात ओ नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराहे रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में नायब वजीर आला हर्ष सिंघवी की मौजूदगी में जिला तरक्याती तालमेल और निगरानी कमेटी की सदारत की। वजीर मौसूफ ने मरकज की कई अहम स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया। किसानों को माली एतबार से बाख्तियार बनाने की गरज से जनाब शाह ने एक तेज रफ्तार सर्वे कराए जाने की बात कही, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जमीन रखने वाले हर किसान को कम अज कम 2 मवेशी मुहैया कराए जाए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि दुनिया भर में किसी भी मईशत की मजबूती बहुत छोटे और मुतवस्सित कारोबारी इदारों के इसके शोबे के इश्तराक पर मबनी होती है। आज नई दिल्ली में MSME के दिन 2026

0: उद्यमी भारत की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एमएसएमई का शोबा पहले सिलसिले के एंटरप्रेन्योर्स के हौसले और कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। नायब सदर ने कहा कि यह शोबा मुसलसल आला मियारात को बरकरार रखते हुए मुल्क की कुल बरामदात में तकरीबन 50% का तआवुन कर रहा है। जनाब राधाकृष्णन ने मजीद कहा कि एमएसएमई का शोबा 2047 तक विकसित भारत की जानिब मुल्क के सफर में एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए एमएसएमई के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने कहा कि मरकजी बजट से एमएसएमई के शोबे के लिए हुकूमत की तरजीह और अज्म का इजहार होता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत एक ऐसे इको निजाम की तश्कील के लिए अहदबंद है जहां हर कारोबारी को इख्तरा तरक्की और मुल्क की तामीर में तआवुन करने के बराबर के मौके मयसर हों।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: वज़ीरे आज़म के म्यूजियम और लाइब्रेरी PMML में आज आनजहानी वज़ीरे आज़म PV नरसिम्हा राव के 105वें यौमे पैदाइश के मौके पर उनके हयात और विरासत के तई वक्फ एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह PMML की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदरनशी नृपेंद्र मिश्रा ने किया और प्रधानमंत्री संग्रहालय में लगी इस नुमाइश को देखने वालों के लिए खोल दिया। इस नुमाइश में ऐसी नायाब तस्वीर, सरकारी दस्तावेजात, तकारीर, खतो मुरासले और आर्काइव से मुतालिक साजो सामान रखा गया है जिससे अवामी जिंदगी में नरसिम्हा राव के काबिल कद्र सफर का इल्म होता है। वजारत दिफा ने आज कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी पोस्ट्स गर्दिश कर रही हैं जिनकी रूह से वजीर दिफा राजनाथ सिंह के पिछले बरस 28 जुलाई को पार्लियामेंट के ऐवान में दिए गए खिताब की गलत तर्जुमानी की जा रही है। वजारत ने कहा है कि इन पोस्ट्स में उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को अलग करके इस तरह दिखाया जा रहा है जिससे ये झूठा गुमान गुजरता है कि जनाब सिंह ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भारतीय फौजी की जान तलफ नहीं हुई है। वजीर दिफा के बयान के तनाजुर की वजाहत पेश करते हुए वजारत ने कहा है कि जनाब सिंह के खिताब के वक्त मीडिया के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर एक मखसूस मुस्तकिल और पुर असर बयानिया उभरा जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पायलट्स की जानें तल्फ हुई हैं। वजारत ने कहा है कि ये बयान कतई गलत था, इसके बावजूद इसे बहुत शिद्दत के साथ तूल दिया जा रहा था जिसमें वाज तौर पर ऑपरेशन की कामयाबी को कम करने और अवामी जज्बात को मजरूह करने की नीयत कार फरमा थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इस बात का एतराफ किया है कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगली मीटिंग में इन इस्तीफों पर गौर वखोज किया जाएगा। इसमें इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अकीदतमंदों की जानिब से दान में दी गई चांदी की ईंटें और जेवरात वगैरह का हिसाब किताब लिया जाएगा। ट्रस्ट ने अपने खत में कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में पेश आए हालिया वाकयात से उसे इंतहाई अफसोस और सदमा पहुंचा है। इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि SIT की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक अतियात से मुताल्लिक मामले में एक FIR भी दर्ज की गई है जिसके तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET से मुताल्लिक पेपर लीक होने के एक बड़े वाकये का राज भिवंडी में फाश हुआ है। इम्तिहान के इनेकाद से एक दिन कबल इस बात का इल्म हुआ और पेपर लीक मामले में मुलव्वस 3 मुबैना अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन TET के सवालनामे दिल्ली से लेकर आए थे और वो मुबैना तौर पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये की मालियत के एक सौदे में उन्हें फरोख्त करने की तैयारी कर रहे थे। एक सुराग मिलने पर कार्रवाई करते हुए भिवंडी की पुलिस ने एक जाल बिछाया।

0: और लेन देन तय पाने से कबल ही तीन मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र की स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने इतवार को होने वाले टीईटी के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस वाकये के सबब महाराष्ट्र भर में लाखों उम्मीदवारों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है। मगरबी एशिया में चार महीने से जारी महाजराई को खत्म करने की गरज से दो हफ्ते पहले तय पाई कमजोर जंगबंदी को इंतहाई दबाव का सामना है। पिछले 48 घंटे में अमरीका और ईरान के दरमियान कई हमले और जवाबी हमले हुए हैं। हमलों ने जुमेरात के रोज उस वक्त जोर पकड़ा जब आबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल जहाज पर किए गए ईरानी हमले के जवाब में अमरीका की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। इसके बाद तेहरान के बकौल आज खत्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन के खिलाफ उसका हमला एक दिफाई हमला था। दोनों ही मुल्क अबूरी माहदे की खिलाफवर्जी का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं जबकि अमरीका और ईरान दोनों ही जैसे को तैसा मुहावरे पर अमल करते हुए फौजी कार्रवाइयों के एक सिलसिले में मुलविस हो गए हैं जिससे 40 मुल्कों की सिफारती कोशिशों को खतरा लाहक हो गया है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खित्ते में आज शाम भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:04 पर 6.2 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया। जलजले के झटके भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत शिमाली भारत के कई हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा और जम्मू जिलों समेत मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। अहलकारों ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में साइंसदान संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि यह जलजला अपनी नौयत के एतबार से मोतदिल था और इसके मरकज के नजदीक तवक्को है कि नुकसान भी काफी कम हुआ होगा।
1: की जो गहराई है 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और इसके झटके जो है दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये रीजन में महसूस किए गए लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज गर्मी की पेशगोई की है। दिल्ली में कल आरजी तौर पर मतला अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। यूएस ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में टाइटन जिम में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने जापान की तीसरे दर्जे की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन क्रिस्टोफरसन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जोफो को 21-9, 12-21, 21-8 से शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल के लिए इस इम्कान को बरकरार रखा है कि फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान आजादी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेज और दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द बोर्ड से मुतालिक मामलों के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को

0: आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुंचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहाँ पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहाँ जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहाँ पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहाँ पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कोश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है
1: जी।
2: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप

0: रहे हैं, वहां पे कैसे भूकंप आते हैं, वहां पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहां पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहां पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं, और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठाकर देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबेल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहां पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस

0: फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
0: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी।
0: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था और केवल रेडियो ही एक होता था और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पर
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम वो सुनते हैं और बताते हैं साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि ये सफलता की कहानी तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को

0: खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9 महीने 10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
1: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में केनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
2: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है।

0: यह वह आवरण होता है जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहां आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज की वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत

0: आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस. वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो जो भी डेटा है हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है. इनफैक्ट मैं तो बोलता मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में सिस्टम में, जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है. तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली.
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद. पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे. श्रोताओं अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की. 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई. इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी. इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है. अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की. 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया. इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है. वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रो ग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं. ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है. अब रुख करते हैं मंगल की ओर. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी. इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं. भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है. जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की. ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की. 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया. इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा. वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया. निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ. तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति. उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा. अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ. आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी. वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा. मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में. नमस्कार.
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती.

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित।

0: आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padmasri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi maestro Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod maestro Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has traveled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।